FM बैंड 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि। तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा शुरू होती है।

0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। लीजिए अब सुनिए हरिओम शरण के स्वर में ये राम भजन।

अभी आप सुन रहे थे सरल कवि रचित नरेंद्र चंचल के स्वर में भक्ति गीत। आस्था के स्वर की अंतिम प्रस्तुति, मिलीजिए सुनिए जगजीत सिंह को।

0: आप सुन रहे थे श्री राम धुन, स्वर जगजीत सिंह का था। इसी के साथ आस्था के स्वर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर FM बैंड 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए चिंतन।
1: यदि हम जीवन में अनेकांत की दृष्टि को परिष्कृत करते हुए परिग्रह का भी त्याग करें तो उद्धार का मार्ग सूझ सकता है। हिंसा की अवहेलना कर अहिंसा के पथ पर चलें तो निरापद और तनाव मुक्त जीवन यापन कर सकते हैं। ज्ञान से जब जीवन प्रकाशमान होता है तो अज्ञान का तम तिरोहित होने लगता है। 10 धर्मों की गंभीरता सागर से भी गहरी है। यदि हमें इन धर्मों के जरिए ज्ञान के सागर की कुछ बूंदें भी उपलब्ध हो जाती हैं तो उन राहों के राही बन सकते हैं जो मोक्ष मार्ग से जुड़ी रहती हैं। शास्त्रों में 10 धर्मों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है: उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। 10 धर्मों के ज्ञान से जीवन की सार्थकता उजागर होती है। सकारात्मक विचारों को आत्मसात करने की कला आध्यात्मिकता के प्रति सुरुचि जागृत करने से आती है। सकारात्मक जीवन को उन्नत बनाते हैं। सकारात्मक के कलेवर में ही उत्तम गण शोभायमान होते हैं। जीवन में नकारात्मक और निरर्थक विचारों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सकारात्मक सद्विचार हमें सदाचारी, सज्जन, निर्व्यसनी और विनम्र बनाते हैं। पुरुषार्थ का यथार्थ सत्य की कसौटी पर प्रमाणित होता है। जब सत्य हमें दिशा देता है तो जीवन की दशा बदल जाती है। इंद्रियों को काबू में रखकर हम भोग विलास जीवन शैली को बदल सकते हैं। नैतिकता और निराग्रही बुद्धि के द्वारा हम भ्रमित तथा शंकित होने से बच सकते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार ने कितने ही जीवन दूषित कर दिए हैं, जबकि शुभ संकल्प जीवन को अशुभ गति में जाने से रोक सकते हैं। यद्यपि गंगा में अपार जलराशि है, लेकिन हमारे पात्र की क्षमता के अनुसार ही उसमें जल समाएगा। परम सत्ता की अनुभूति भी पात्रता अनुसार ही प्रतीत होती है। जब तक परम तत्व और पात्रता का रुख नहीं मिलेगा, जीवन रूपी ये पात्र लबालब कैसे होगा? पशु चरते हैं, पक्षी विचरते हैं, जबकि मनुष्य विचार करते हैं। अतः संसार में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार समतल सतह पर सुंदर चित्रांकन किया जा सकता है, उसी प्रकार सुंदरतम विचारों की उत्पत्ति के लिए भी मन की भूमि शुद्ध होना नितांत आवश्यक है। हिंसा, झूठ, चोरी तथा राग द्वेष आदि वृत्तियां जीवन को लील जाती हैं, जबकि उत्तम विचारों अर्थात 10 धर्मों की गरिमा जीवन की महान धरोहर है। यूं तो सूर्य की रश्मियां समस्त संसार को प्रकाशमान करती हैं, यदि उनका प्रकाश हमारे आंगन तक नहीं आता है तो कोई आवरण जरूर है। जब हम अज्ञान का आवरण हटाने में समर्थ हो जाते हैं तो ज्ञान का अप्रतिम प्रकाश हमारे भीतर पाते हैं। इस प्रकार ज्ञान और भगवान में फर्क कहाँ रह जाता है? पूजा पाठ, सामयिक और 10 धर्मों के संदर्भ में संतों के प्रवचन उस धनुष बाण के समान हैं जो जीवन पथ में किसी कलुष को टिकने नहीं देते। 10 धर्मों की पावन रोशनी में हम जीवन के लक्ष्य को यथाशीघ्र निर्धारित करते हुए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हैं। 10 धर्मों के माध्यम से यही जीवन की जय और विजय है।
0: ये था आज का चिंतन, 10 धर्म। निवेदक डॉक्टर देवेंद्र जैन और स्वर रवि सोनी का। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी खंडवा से लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नवविवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की, आरती उतारी।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी खंडवा से लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा। वाचक स्वर सीमा कराहे का, विषय मक्का की खेती।
3: किसान भाई बहनों राम राम। किसान भाई बहनों, आज हम कृषि चर्चा में बात करेंगा मक्का की खेती पर। मक्का देश का मैदानी न पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल छे। मक्का का दाना नसी कई उत्पाद बनाया जा जेका सी कई व्यवसाय संचालित छे। पशुओं का चारा में भी एक ही उपयोगिता छे। बढ़ती हुई जनसंख्या में भोजन व्यवस्था में मक्का को महत्वपूर्ण योगदान छे। वैज्ञानिक न को मानना छे कि दूसरी हरित क्रांति में मक्का महत्वपूर्ण छे। किसान मक्का का भुट्टा बाजार में बेचीना एक नगदी फसल का रूप में आय प्राप्त करज मक्का का दाना में 10% प्रोटीन, 4% तेल, 70% कार्बोहाइड्रेट न 23% क्रूड फाइबर रहे। अब बात करें जलवायु की तो मक्का की खेती का लेना नई न गर्मयुक्त वातावरण की आवश्यकता रहे। अंकुरण का लेना 21°C न वृद्धि का लेना 32°C तापक्रम रहना चाहिए। भाई बहनों, अब बात करें भूमि की तो मक्का की खेती का लेना अच्छी जल निकास वाले बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है जिको पीएच मान 5.5 से 7.5 माने गए। एक ही खेती आसानी से करी जा सके, जल जमाव इन फसल का लेना नुकसानदायक छे। उचित जल निकास वाले न जीवांश से युक्त मिट्टी में एक ही खेती आसानी से करी जा सके। अब बात करें खेत की तैयारी की तो पहली जुताई मिट्टी पलटना वाला हल से करी जाए। एक बात कल्टीवेटर या देशी हल से जुताई करी ना, हर एक जुताई के बाद पाटो चले ना खेत की मिट्टी का हल्की न भुरभुरी बनाई लेवा। एक बात सिंचाई न निराई गुड़ाई की सुविधा का लेना खेत में क्यारी बनाई देवा। क्यारी सी खरपतवार का अवशेष न का अलग करो जाई सकज। उन्नत किस्मों में छे गंगा 11, देवकी कंचन, पूसा, मक्का 3, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3। बुआई को उचित समय छे 15 जून से जुलाई तक को। बुआई को कार्य इना समय पूरा कर लेवा। समय पर बुआई करना सी उत्पादन में बढ़ोतरी हो। अब बात करें बीज दर की। लगभग 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से आवश्यकता है। संकर मक्का की बुआई का लेना हर साल नया बीज बाजार से लेना बुआई करा। बीज उपचार की बात करा तो बीज नखा कार्बन डाइजिम फफूंदी नाशक दवा का द्वारा बुआई का 15 घंटा पहला 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना बुआई करना चाहिए। एकासी बीज जनित रोग नसी मुक्ति मिला। बीज बुआई 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए। न बीज न उर्वरक अलग अलग नाड़े नमा डालना चाहिए। बात करें पोषक प्रबंधन की। पोषक तत्व प्रबंधन में खेत की तैयारी का समय लगभग 15 टन गोबर की सड़ी खाद समान रूप से बिखेरी न मिट्टी में मिलाई देना चाहिए। रासायनिक उर्वरक नमा 10 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर न 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता है। जेमा नत्रजन की 1/3, फास्फोरस न पोटास की पूरी मात्रा बीज बुआई का समय देवा। नत्रजन की शेष मात्रा का 2 बराबर भाग में बांटी न बुआई का 30 दिन बाद खड़ी फसल में जड़ का आसपास देना चाहिए। अब बात करें सिंचाई की तो खरीफ फसल में प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मौसम गर्म हो जाए तो मिट्टी का प्रकार न मौसम का अनुकूल 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़े। अंकुरण निकलने से दाना बढ़ना तक खेत में पर्याप्त नमी क्यों रहना अनिवार्य है। सूखो पड़ने पर खेत में नमी बनाए रखा। दाना में दूध बनता समय आवश्यक नमी का लेना सिंचाई करना चाहिए। इन मौसम में जल निकास की उचित व्यवस्था करना चाहिए। भाई बहनों, खरपतवार नियंत्रण के लिए मक्का में निराई गुड़ाई बहुत आवश्यक छे। निराई गुड़ाई करी ना खरपतवार नखा खेत से बाहर निकालना चाहिए। निराई गुड़ाई करना से पौधा का विकास का लेना अच्छा माध्यम मिला। न रोग प्रबंधन का लेना फसल में उपस्थित मित्र कीट न को संरक्षण करा। प्रति हेक्टर 10 से 15 फेरोमोन ट्रैप खेत में लगावा। 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में नीम आधारित दवा को घोल बनाईना छिड़काव करा। तो भाई बहनों, आज की कृषि चर्चा में बस इतना। राम राम।
2: ये थी आज

की कृषि चर्चा। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम में सुनिए वैश्विक क्षमा दिवस, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार हैं नमिता जैन। सुबह 7:20 पर आज विविधा में आप सुन सकेंगे वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद श्रीकांत साकल्ले से काव्य रचनाएं। सात बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। आठ बजकर 15 मिनट पर आनंद ले निमाड़ी लोक गीतों का और 8:30 पर सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीत कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। 9 बजे से रिले किए जाएंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 10 बजे। 10:05 पर होगा कार्यक्रम लोक रंजनी, प्रस्तुति मनीषा चौबे की। 10:40 पर आकाशवाणी खंडवा से सुनिएगा सुगम संगीत और 11 बजे से सुनिए राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आज शाम 5:30 पर हमारे केंद्र से सुनिए प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT। 6:00 युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का क्रम है हमारे शहर। आज सुनिए राजकोट शहर के बारे में। फिल्म संगीत का लुत्फ लें शाम 6:30 पर। 7:21 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। 8:00 से रिले किए जाएंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम और इसी बीच 9:15 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे स्पॉटलाइट। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः बता दें, अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7:00 विशेष कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे वैश्विक क्षमा दिवस पर नमिता जैन से वार्ता और 7:20 पर विविधा में सुनिएगा वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद श्रीकांत साकल्ले से काव्य रचनाएं।

0: ये आकाशवाणी खंडवा है, प्रस्तुत है आज की ताजा खबर।
1: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

पेश है आज प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पांचवी और आठवीं के पुनः परीक्षा परिणाम आज दोपहर 2 बजे आएंगे। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अर्थात एल्मिको उज्जैन के सहयोग से भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत जिले के पात्र दिव्यांगजनों के चिन्हांकन परीक्षण और आवश्यक सहायक उपकरणों के लिए 8 से 17 जुलाई तक विभिन्न विकास खंडों में परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। शहर की महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय खंडवा में सोमवार को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश श्री वीरेंद्र जोशी ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सकारात्मक सोच और लक्ष्य से ही मिलती है सफलता। हर साल के अनुसार इस साल भी बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान और त्वरित उपचार व रेफर सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण 14 जुलाई से 31 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। सोमवार शाम को कलेक्टर ने एसडीएम और निगम अधिकारियों के साथ 3 पुलिया नाले की निकासी का निरीक्षण किया। शहर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता विषयक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सामूहिक प्रसारण किया गया। खबर खेल जगत से। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे 2-1 से जीता। अब 11 जुलाई को क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से भिड़त होगी। खबर मौसम की। कल दिन का पारा 0.6 डिग्री बढ़ा। आज रिमझिम बारिश के आसार। कल दिन का तापमान अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समाचार संकलन विद्या मुकेश चौहान का।

0: आज की ताजा खबर।
1: FM बैंड 101.2 मेगा

0: हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 7 बजने को है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में लीजिए सुनिए वैश्विक क्षमा दिवस, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार नमिता जैन।
1: जब लोग आपकी भावना या भरोसे को ठेस पहुंचाते हैं तो ऐसा करना मुश्किल हो सकता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब लोग आपको सच्चा पछतावा दिखाते हैं और आपके साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं तो उन्हें माफ़ करने और उन्हें दूसरा मौका देने पर विचार करना ज़रूरी है। यह लोगों को दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करने का एक सही अवसर है। हर साल 7 जुलाई के दिन वैश्विक क्षमा दिवस लोगों की गलतियों को माफ़ करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। क्षमा दिवस का यह दिन हमें बताता है कि जो लोग क्षमा करते हैं वे क्रोध करने वालों की तुलना में अधिक खुश और स्वस्थ होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी को क्षमा करना या क्षमा का मार्ग खोजना कभी कभी कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कई और विभिन्न दृष्टिकोण हैं जो क्षमा का मार्ग देखने में हमारी सहायता कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। क्षमा करना जितना चुनौतीपूर्ण है उतना हिम्मत का काम भी है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। इस सूक्ति से समझा जा सकता है कि गलती करना या किसी को दुखी करना जितना सरल काम है, क्षमा करना उतना ही कठिन है। कई लोग छोटी से छोटी गलती को क्षमा करने में बहुत सोचते हैं और बड़ी बड़ी गलतियों या गुनाहों को क्षमा करना तो बहुत ही हिम्मत का काम हुआ ना, इसलिए इसे वीरता का कार्य कहा जा सकता है। और जो व्यक्ति क्षमा रूपी आभूषण को धारण करता है वो दुनिया में पूजनीय हो जाता है। वैश्विक क्षमा दिवस का अपना एक इतिहास है। 20वीं शताब्दी में क्षमा ने विज्ञान का ध्यान खींचा जब वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों ने मानव कल्याण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना शुरू किया। 1994 में क्रिश्चियन एम्बेसी ऑफ क्राइस्ट एम्बेसडर यानी CECA द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया में राष्ट्रीय क्षमा दिवस की स्थापना की गई। CECA यानी क्राइस्ट एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट ने विक्टोरिया शहर में इसे राष्ट्रीय क्षमा दिवस के रूप में घोषित करते हुए एक विशाल बैनर लटका दिया। इस दिन ने गति पकड़नी शुरू कर दी और बाद में जब यह लोकप्रिय हुआ तो इसका नाम बदलकर वैश्विक क्षमा दिवस कर दिया गया। इसकी शुरुआत मूल रूप से कनाडा में हुई थी। हर गुजरते साल के साथ वैश्विक क्षमा दिवस यानी ग्लोबल फॉरगिवनेस डे ने मीडिया का ध्यान खींचा और लोगों ने इसे दुनिया भर में क्षमा के संदेश फैलाने के लिए मनाना शुरू कर दिया। हालांकि अगस्त में एक अलग क्षमा दिवस भी होता है जिसकी स्थापना वर्ल्ड वाइड फॉरगिवनेस अलायंस द्वारा की गई और वास्तव में दोनों ही दिनों पर एक ही संदेश दिया जाता है, क्षमा करना। वैश्विक क्षमा दिवस की स्थापना लोगों के बीच सद्भावना पैदा करने और उन्हें अपने जीवन में इतना अधिक अपराधबोध और दर्द सहने से रोकने के लिए की गई थी। यह मतभेदों और संघर्षों को अलग रखने और दुखों को क्षमा करने और उपचार खोजने का दिन है। वास्तव में कुछ स्वास्थ्य अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग माफ़ी देने के लिए तैयार हैं, चाहे खुद को या दूसरों को, वे माफ़ी न देने वालों की तुलना में ज़्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। माफ़ी पर केंद्रित जीवन जीने का यह एक बड़ा कारण है। माफ़ करने वाला व्यक्ति नाराज रहने वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत ही अधिक स्वस्थ और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। अतः क्षमा करना मनोविज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है। यह तो वैश्विक क्षमा दिवस की बात हुई, लेकिन हमारे देश में यह एक पर्व के रूप में भी मनाया जाता है जिसे क्षमावाणी पर्व कहते हैं।

0: और यह पर्व जैन धर्म का बहुत ही बड़ा पर्व होता है। यह भादो माह में आने वाले परिषण पर्व के प्रथम दिन होता है, किंतु इसे आखिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी जैन धर्मानुयायी एक दूसरे से वर्ष भर में हुई गलतियों की क्षमा मांगते हैं। घर परिवार, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, जान पहचान, परिचितों में, सभी से फ़ोन लगाकर या मैसेज भेजकर हाथ जोड़कर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं और क्षमा भी करते हैं। धीरे धीरे अन्य धर्मानुयायी भी क्षमावाणी पर्व को महत्व देने लगे हैं। वैश्विक क्षमा दिवस मनाना उतना ही सरल या जटिल हो सकता है जितना कोई व्यक्ति इसे बनाना चाहता है। इसे मनाने के लिए कुछ रचनात्मकता पर विचार कर सकते हैं, जैसे किसी बिछड़े हुए मित्र या परिवार के सदस्य से संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपस की दूरी कम हो सकती है। पुराने घावों को भरने का सबसे सही दिन वैश्विक क्षमा दिवस है। किसी ऐसी बात को छोड़कर अपने अंदर की पीड़ा को दूर कर सकते हैं जो आपके अंदर पनप रही है, और उस व्यक्ति को यह बताएं कि उसे माफ़ कर दिया गया है। वैसे यह किसी भी दिन हो सकता है और इसके लिए किसी खास दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैश्विक क्षमा दिवस वास्तव में ऐसा करने के लिए एक प्रेरणा का काम कर सकता है। शायद यह उस दोस्त या परिवार के सदस्य से बातचीत की शुरुआत भी करने के लिए एक अच्छी शुरुआत के रूप में काम करेगा जिसे माफ़ी की आवश्यकता है। कुछ लोगों को अपने जीवन में कई दशक लग जाते हैं यह समझने में कि माफ़ करना कितना आवश्यक है, इसलिए कई बार बहुत देर हो जाती है और वह रिश्ता खत्म ही हो जाता है। अतः बच्चों को कम उम्र से ही क्षमा मांगने और क्षमा करने के महत्व को बताएं और सिखाएं भी, जिससे बड़े होकर वह एक संस्कारवान और क्षमावान मनुष्य बन सकें। जीवन बहुत छोटा है और क्षमा करना कितना सुखद लगता है। साथ ही दूसरों को यह एहसास पहुंचाने से उन्हें अपने जीवन में भी किसी को क्षमा करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे उनका बोझ हल्का होगा और वे प्रसन्नता से रहने से अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसका जीवंत उदाहरण मैंने अपनी रिश्तेदारी में भी देखा है। एक भाई बहन ने वर्षों से बिगड़े और लगभग खत्म रिश्ते को क्षमा करने के बाद फिर से शुरुआत किया। इससे बहन के स्वास्थ्य और स्वभाव में बहुत ही परिवर्तन और लाभ हुआ। इसका एक अन्य उदाहरण और भी सुनने में आया है कि दो भाइयों ने वर्षों से चल रहे जमीन के विवाद को उनके नगर में आए हुए एक संत के चरणों में समर्पित कर दिया और उन्होंने कहा अब वे ही इस जमीन के विवाद को सुलझाएं। संत ने उन्हें प्रथम तो एक दूसरे को क्षमा करने के लिए कहा, फिर उन्होंने उस जमीन को समाज की उन्नति के लिए दान करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को क्षमा करने के साथ साथ उस जमीन को समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इस तरह दोनों भाइयों ने एक दूसरे को क्षमा करके वर्षों से हुए विवाद को भी समाप्त कर दिया और प्रसन्नता से एक दूसरे के साथ रहने लगे। इस तरह क्षमा करने के और भी अन्य अनेक उदाहरण मिल सकते हैं जिसका जीवन में चमत्कारिक लाभ हुआ। संपूर्ण विश्व में क्षमा को महत्व देने के लिए एक दिन निश्चित किया है, लेकिन हमें सही मायने में हर दिन क्षमा दिवस के रूप में मनाना चाहिए, जिससे सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, जिससे वह उन्नति की ओर बढ़ता रहे। सभी को वैश्विक क्षमा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: अभी आपने सुना वैश्विक क्षमा दिवस पर वार्ता। वार्ताकार थी नमिता जैन। FM बैंड 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के

7:10 होने को है। मध्य प्रदेश क्षेत्रीय समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगी मजबूती। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ाएंगे किसानों की आमदनी। और मौसम विभाग के अनुसार आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से समुद्री और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे और उभरते क्षेत्रों में सहयोग गहरा होगा। राजदूत ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इस प्रवृत्ति को और बल देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहल की घोषणा कर सकते हैं। इनमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वे आगामी रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे ताकि सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे इस साल ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जुड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं बल्कि उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्नत कृषि पर हुई संभागीय कार्यशाला में मौजूद किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में जैविक और प्राकृतिक खेती पर किसानों के अनुभव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मध्यप्रदेश

के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। 13 जुलाई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 14 जुलाई को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 जुलाई को नाम निर्देशन पत्र की वापसी की तारीख है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से कल मध्यप्रदेश संवर्ग 2025 बैच के चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मकवाणा ने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तन्मयता से प्राप्त करें ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर सकें। उन्होंने 9 चयनित अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नारकोटिक्स और नशा मुक्ति जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थी वार परिणाम भी देख सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने संचालित शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते पिछले 6 दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 1% बारिश कम हुई है, जबकि जून में यह 33% कम थी। अब तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। जकार्ता में अंडर-23 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज 50 किलोग्राम भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश ने उज्बेकिस्तान के अमीर बेग इस्माइलोव को हराकर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पुरुष वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में गंगा ने मंगोलिया के अमगाला नबातर बुलगुंग को 5-0 से हराया। वहीं महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में तनु ने कोरिया की रेंगयोंग किम को 5-0 से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में बीती रात हुई लगातार बारिश के चलते केन, मिनासन और पत्नी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। झाबुआ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एकलव्य योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हेतु 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। सतना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लगभग 100 स्ट्रीट डॉग्स का एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। मंडला जिले की घोघरी तहसील में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM बैंड 1.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है विविधा। विविधा में आज सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद श्रीकांत साकल्ले से उनकी काव्य रचनाएं। तो लीजिए सुनिए ये रचनाएं।

आकाशवाणी खंडवा से आज के इस कार्यक्रम में अपनी कुछ रचनाओं के साथ मैं श्रीकांत साकले सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। पहली रचना बिना किसी भूमिका के एक गीत शैली में प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है कुछ करें और कह जाएं। सवालों की भीड़ है जवाबों की जमावट, सवालों की भीड़ है जवाबों की जमावट, सहमे से चेहरे संघर्षों की आहट, सहमे से चेहरे संघर्षों की आहट, उलझनों के न्योतों से बचकर, उलझनों के न्योतों से बचकर, राहत की राह को सुझाए, हाथ पर हाथ धरे क्या बैठे, आओ कुछ करें और कह जाएं। हाथ पर हाथ धरे क्या बैठे, आओ कुछ करें और कह जाएं। रिश्तों से नितरा जो खून है, दर्द नहीं देता क्या गहरा, तारीखों से कैसे पार लगे, उपनाते सैलाबों का पहरा, तो फिर से चौराहों चौपालों तक, फिर से चौराहों चौपालों तक, कबीरा का निर्गुन गुंजाए, हाथ पर हाथ धरे क्या बैठे, आओ कुछ करें और कह जाएं। कुटियों कॉटेजों की खाइयां नारों के छल से न पट पाती, ऊंचे नीचे कुल की पहचाने चर्चाओं में सिमटहीन हो जाती, तो सदनों को करुणा दे कुटियों को संरक्षण, तो सदनों की करुणा दे कुटियों को संरक्षण, पंडित संग रमुआ भी राम धुन गाए, हाथ पर हाथ धरे क्या बैठे, हाथ पर हाथ धरे क्या बैठे, आओ कुछ करे और कह जाए। दिशाहीन कदमों के सफर में पड़ाव मिले रिश्ते घावों के, गिरगिट से पड़ोसी बैतालों के, प्यादे हैं शतरंजी दावों के, तो संयम को ललकारे विषधर ना पाले, संयम को ललकारे विषधर ना पाले, रक्तिम रंगोलियों की यादें दोहराए, हाथ पर हाथ धरे क्या बैठे, आओ कुछ करे और कह जाए। आंगन में उतरे अंधियारे को, ये अंतिम छंद प्रस्तुत है। आंगन में उतरे अंधियारे को, कितना कोसे हासिल क्या होगा, आंगन में उतरे अंधियारे को, कितना कोसे हासिल क्या होगा, असमंजस के अंतहीन गोतों में कितनी कुंठाओं को भोगा, असमंजस के अंतहीन गोतों में कितनी कुंठाओं को भोगा, तो वाणी के विप्र को जगाए, वाणी के विप्र को जगाए, अग्नि आचमन है तो तत्पर हो जाए, हाथ पर हाथ धरे क्या बैठे, आओ कुछ करें और कह जाएं। सवालों की भीड़ है जवाबों की जमावट, सहमे से चेहरे संघर्षों की

न्योतो से बचकर, उलझनों के न्योतों से बचकर, राहत की राह को सुझाएं, हाथ पर हाथ धरे क्या बैठे, आओ कुछ करें और कह जाएं। मेरा अगला गीत है, जुगनुओं की फौज पहुंची सूर्य से लड़ने। गीत का शीर्षक है कब तलक हम। जुगनुओं की फौज पहुंची सूर्य से लड़ने, बो दिए विषदंश अब तो चींटियों तक ने। कब तलक संशयों को ही सच कहेंगे हम, कब तलक संशयों को ही सच कहेंगे हम, रच रहे हम फिर घरों दे आज खंडहर में, हम लगे पद चिन्ह को ही रास्ता कहने। रच रहे हम फिर घरों दे आज खंडहर में, हम लगे पद चिन्ह को ही रास्ता कहने। तो कब तलक कठपुतलियों सा जी सकेंगे हम, कब तलक इन संशयों को सच कहेंगे हम। पुष्प को घेरे खड़े हैं धूप के पारे, पुष्प को घेरे खड़े हैं धूप के पारे, मौन सन्नाटे भरे यह मौसमी चेहरे, मौन सन्नाटे भरे यह मौसमी चेहरे। वक्त की समिधा बने कब तक जलेंगे हम, वक्त की समिधा बने कब तक जलेंगे हम, कब तलक इन संशयों को सच कहेंगे हम। हादसों सी भोर आती दहशतों सी शाम, हादसों सी भोर आती दहशतों सी शाम, वक्त ने भटकन बटोरी मौसमों के नाम, वक्त ने भटकन बटोरी मौसमों के नाम। मरघटों को कब तलक पलकों बसाए हम, कब तलक इन संशयों को सच कहेंगे हम। हर हंसी विज्ञापनों सी हर प्रणय आतंक, हर हंसी विज्ञापनों सी हर प्रणय आतंक, हर अजंती यात्रा में शाम चलते संग, हर अजंती यात्रा में शाम चलते संग। कब तलक खयाम को दोहरा सकेंगे हम, कब तलक खयाम को दोहरा सकेंगे हम, कब तलक इन संशयों को सच कहेंगे हम। घाट के से पत्थरों से हम हुए खामोश, घाट के से पत्थरों से हम हुए खामोश, हर असुविधा नाल सी ठहरी हुई बन अंश, हर असुविधा नाल सी ठहरी हुई बन अंश। भ्रम बिना क्या अब नहीं ही जी सकेंगे हम, भ्रम बिना क्या अब नहीं ही जी सकेंगे हम, कब तलक इन संशयों को सच कहेंगे हम। अंतिम छंद है कि रेत में रोपे हुए हैं कुछ तरल परिवेश, रेत में रोपे हुए हैं कुछ तरल परिवेश, खेत के धोके धरे हैं आदमी का वेश, खेत के धोके धरे हैं आदमी का वेश। तैरने के नाम पर कब तक बहेंगे हम, तैरने के नाम पर कब तक बहेंगे हम,

0: कब तलक इन संशयों को सच कहेंगे हम। जुगनुओं की फौज पहुंची सूर्य से लड़ने, बो दिए विषदंश अब तो चीटियों तक ने। कब तलक इन संशयों को सच कहेंगे हम, कब तलक इन संशयों को सच कहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रीकांत साकल्ले से काव्य रचनाएं। विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। FM बैंड 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मंजिल फिल्म का गीत, जिसे गाया किशोर कुमार ने और संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। शब्दकार योग।

Ayer अब इस भीगे भीगे मौसम में सुनते हैं ये अगला गीत।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: ये गीत अभी आपने सुना चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार सचिन देव बर्मन। आइए इस मदमस्त मौसम में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम झुक गया आसमान।

मोहम्मद रफी की शोक आवाज में भी आपने सुना झुक गया आसमान फिल्म का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।

आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया और आनंद बख्शी का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम नाइट इन लंदन।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: हे

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं हेमंती शुक्ला और येसुदास काया गीत चश्मे बद्दूर फिल्म से। इसी के साथ आज का सुनहरे पल कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। दे आयशा को इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सुनहरे पल, यह आकाशवाणी खंडवा है। अब समाचार।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद

0: निकाले अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
3: India and Indonesia are very close and strategic partners.
4: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स।

0: और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है, इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
0: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा।

0: स्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत। निमाड़ी लोकगीत में आज सुनिए कांता जोशी के गाए निमाड़ी गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश।
2: जी हाँ, गोरिया के देश पहुँचेगा इस बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम का कारवां।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे शंकर भजन। लीजिए अब सुनिए कृष्ण भजन।

0: आप सुनी रहा छी मार की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोकगीत। आज आपने सुने कांता जोशी के गाए निमाड़ी गीत। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है।
0: पीछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी खंडवा से अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
2: आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत के सभी सुनने वालों को आयशा का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और लेते हैं सबसे पहले वे नाम जिन्होंने हमारे से इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहा है। श्रोतागण हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाड़कर राही, सरिता गवहाड़कर, सिद्धांत गवहाड़कर और

और प्रिंस एकांश गवाड़कर। नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा, मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार टावर, अब्दुल हक टावर, जियाउल हक और सोहन जोशी। परदेसीपुरा खंडवा से शेख सईद राही और अनस भाई। खंगवाड़ा सनावत से दगड़ूजी सेन, धर्मेंद्र सेन, श्रीराम सेन, आयुष दीपांशु, कलाबाई, सावित्रीबाई, निशा, आरुषि, लक्षिता और पूरा सेन परिवार। बिहारीपुरम खंडवा से महेंद्र यादव, बीना यादव, गुड़िया और अजिता सिन्हा। ग्राम टोकिया चूरू से कृष्णा देवी और बिहार भवन दिल्ली से सुमन यादव, सिमरन यादव। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना और विपुल कांबड़े। बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति और वैभव शिंदे। हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। ग्राम रतनपुर, तहसील झिरनिया, जिला खरगोन से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविन्द्र शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद आदित्य, नन्ही सोना, प्रियांश, गुनगुन और इनका पूरा परिवार। आप सबने सुना चाहा है कार्यक्रम के पहले गीत को, तो लीजिए सुनते हैं ये गीत। ये गीत है फिल्म यस बॉस से।

अभी आपने सुना जावेद अख्तर का लिखा जतिन ललित का संगीतबद्ध किया गीत यस बॉस फिल्म से। आवाजें थी अलका याग्निक और रुदित नारायण की। इसी गीत को सुना चाहा था यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान योगेश्वर पूरे परिवार ने, पुरानी भिलाई तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन, जीशान अहमद और शहनवाज अहमद, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और सुषमा कपूर ने, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना ने, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा गगन, सोनी, गीता और सीता, राजकोट गुजरात से रश्मि जरना, एयरपोर्ट कॉलोनी से उमा देवी, प्रमिला तुलसी देवी और मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से तस्नीम कौशर, इशिता और साहनी ने, साथी पसंद आई कोयला नगरी बरका काना से अफजल इब्राहिम, नाजनी तबस्सुम और मोहम्मद अफजल मलिक की, सेक्टर 5 कुंडी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी और कल्पित चौहान, साथ में है बेबी गर्वी, बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून, बिहारीपुर से अजिता शर्मा, आशा पूनम और प्रवीण शर्मा, दरबार कॉलोनी सनावत से पसंद किया इसी गीत को किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना और बिटिया चारुवी सावले ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार की आवाज़ में, बोल इरशाद कामिल के और धुन प्रीतम की। इस गीत को सुनना चाहा पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सुल्तान अंसारी और असमानाज अंसारी ने, महाराष्ट्र से पीएस नवाकर निर्मला और विशाल नवाकर, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने, विरमगाम सिटी से उस्मान बोहरा और शहनाज बोहरा ने, ग्राम आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान तनवीर मसरत, सैयद नोमान नोयान और राम भाऊ तांदले ने, इसी गीत को पसंद किया धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा और विनीत कुमार पटवा, साथ में है कुमारी क्रिस्टी। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन और रितेश सेन ने, धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने, बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, भाई उस्मान कुंजरा और अखलाक अहमद बागवान, रिंगनी से ज्योति ठाकुर और वीणा ठाकुर, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद और मिफ्रा नाज, बेबी चाहत ने। साथ ही पसंद किया सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती, स्वाति ख्याति कलावती और जूली गुजराती, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर ने, तलेगांव यवतमाल से निशा रानी नागरीकर, नीलेश जी और आरव और अर्पिता, छोटी बलिया से अब्दुल कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन, उमरखेड़ से भाई रज्जाक और शबाना बेगम और साथ में ही जावेद खान, जलंधर से मीना कौर, नरेंद्र कौर और संदीप कौर, रिंगनी से प्रमिला जैन और मृदुला जैन, गांधीगाम गुजरात से प्रवीण सोनी, जगदीश जोहरी और पूजा पायल, शास्त्री नगर बीर शहर से आशा सपकाल, किशन सपकाल, साईराज सोनिया और विशाल सपकाल, रिंगनी से रमेश गोंड,

0: गणेश और करुणा गोंड, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रोल, नारायणी सिंह रोल, नोमेश और नेहा और वान्या सिंह रोल, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन, सरधना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन, बागवान मंजिल तालुका करजत से नूर आयशा अहमद बागवान, आसमा आमना परी दुखना रानी और आशु अहमद बागवान, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन और भाई उस्मान कुजरा ने भी पसंद किया था इसी गीत को। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
6: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
5: मतलब?
6: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
5: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे पसंद किया है सनावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, कृष्णपाल सिंह चौहान, मिश्रा गोल्डन, भगवान पेंटर, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव, कृतिका काव्यांशी और श्रीमती प्रभा कटारिया ने। सनावत से योगांश लक्षिता प्रजापति ने। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने। जेल रोड मुस्तफाबाद से लालबाबू दीवाना और दिव्या भारती। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी ने। ग्राम बेवरा संबलपुर छत्तीसगढ़ से शिवदयाल वर्मा और नरोत्तम वर्मा। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति वर्मा। डोंडी लोहा लाहौरा बालो से तुलसीदास दुबे, दया दुबे, निखिल कौशल्या और प्रमिला जोशी। जेल रोड सहारनपुर से अजीता पॉल और नितिन पॉल। डुमराव शहर से वलीउल्ला अंसारी, जूही परी और डोली रानी। कच्छ गुजरात से पंकज जोशी, मृंजुला जोशी और सरिता जोशी। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से यशराज प्रशांत शिंदे और कृष्णा घोड़के। धनतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और लोखेलाल वर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सोरा और शियाना शर्मा। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी। ग्राम राजापुर बिहिया से मोनिका कुमारी, भानुप्रिया और प्रमिला कुमारी। गौतमनगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू। शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, सपना शिवी सलोनी, अनय अनाया, ईशु और पेंटर बाबू। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल पूर्वी, राजेश साहू और रेशमा साहू। गुमला झारखंड से नजमुल होदा और SM जावेद और साथ में ही शगुफ्ता अंजुम। झिरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह गौड़, सचिन प्रीति, भावना अंतिम पलक, श्रुति यशराज सिंह गौड़ और देवराज किट्टू सावी। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी खुशी और वंदना खर्चे। साथ ही पसंद किया दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं जुदाई फिल्म का ये गीत।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: इस संदेश के पहले आपने सुना अलका याग्निक का अभिजीत और सपना मुखर्जी की आवाज में नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया गीत, जिसे लिखा समीर ने। फिल्म थी जुदाई। इसी गीत को सुनने की कुछ और फरमाइश हमें मिली थी। राजगढ़ शहर से उमा अरविंद, वीणा देवी और जाह्नवी निवेश और रुचि प्रभा की। विरमगाम जंक्शन से प्रमिला पाटिल और अजीता पाटिल की। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, श्रीमती रेखा देवी सिन्हा, अजय कुमार और अभय कुमार की। सिटी सेंटर अहमदाबाद से पसंद किया था इसी गीत को कंचन, कुसुम, कुंदन और रंजन श्रीमाली ने। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और मोहम्मद हसनैन रजा ने। झीन कॉलोनी अहमदपुर खैगांव से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, समर और वैदिका फुलमाली। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। डोंडी लोहारा से रुचि गुप्ता, प्रभा रानी, ट्विंकल और उमा गुप्ता। शिवाजी नगर से दिनेश खोबरखेड़े और मन्नत खोबरखेड़े। गांधी ग्राम राजकोट से नथुलाल कलाल और पुष्पा देवी कलाल। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोडाना ने पसंद किया था इस गीत को। साथ में सुनना चाह अदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया काना और कृष्णा ने। साथ ही अगली पसंद हमें मिली इंदिरा चौक जाफराबाद दिल्ली से अजीम वकार और माहिरा अजीम, विरमगाम जंक्शन से प्रमिला डोमिन और अजीता डोमिन की। इसी के साथ कार्यक्रम आपकी मीठे गीत अब यहीं संपन्न हुआ। दे आयशा को इजाजत। नमस्कार।
0: आपके मीत ये गीत।
1: अभी आपके मीत ये गीत कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं क्या दिल ने कहा इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, संजय छैल की शब्द रचना और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोता, हम आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी हैं, और रात को 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सुनना नहीं भूलिएगा। अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, ये है जलवा फिल्म से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, सुधाकर शर्मा के बोल, संगीत एक बार फिर हिमेश रेशमिया का।

ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। रहना है तेरे दिल में इस फिल्म का गीत सुनिए। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में समीर की रचना, हरीश जयराज का संगीत। मुझे कहना

कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति फिल्म अंदाज से बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण की बनाई तर्ज़।

श्रोताओं, आज है अभिनेता दिलीप कुमार की पुण्यतिथि। भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी अदाकारी, सादगी और अमर किरदार सदैव भारतीय सिनेमा के इतिहास को रोशन करते रहेंगे। उन्हें हमारा विनम्र नमन। और अब से कुछ ही देर में आज आप कार्यक्रम सुनेंगे आज की फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर। अभी आप गीत सुन रहे थे चित्रलोक में अंदाज फिल्म का, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने।

0: शुक्र है गिरी ने।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। हा, हा।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पेश है अदाकारे आजम दिलीप कुमार।
1: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है।
0: दिलीप कुमार को अदाकारे आजम यूं ही नहीं कहते। आप सोच रहे होंगे आज के फनकार कार्यक्रम में हम बताएंगे दिलीप कुमार साहब कहां पैदा हुए, किस तरह से एक्टिंग की दुनिया में आए, किस तरह से उन्होंने अपनी शैली बनाई और किस तरह से अपना फिल्मी सफर आगे तय किया। लेकिन नहीं जनाब, ये सब आप जानते हैं और हमें पता है कि आप ये सब बार बार नहीं सुनना चाहते। आज के फनकार कार्यक्रम में आज होंगे दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल नायाब संवाद। कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम गाने इस कार्यक्रम में शामिल करें, यानी इस कार्यक्रम को अदाकारे आजम दिलीप कुमार के संवादों से सजाया गया है। तो सबसे पहले मुगले आजम।
2: महाबली का सामना एक लौंडी के लिए
1: नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मकरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी।
2: हरगिज नहीं, खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुल जाए। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने।
1: तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें।
0: दिलीप कुमार ने संवादों की अपनी अदायगी की शैली धीरे धीरे विकसित की है। सन 1950 की तरफ लौटते हैं, एसयू सनी की फिल्म आई बाबुल, जिसके सितारे थे दिलीप कुमार, नरगिस, मुनव्वर सुल्तान वगैरह। सुनिए उस जमाने में दिलीप कुमार कैसे बोला करते थे।
3: अशोक बाबू, माफी मांगने आई हूँ।
4: आप ही ने दिल का माल उठाया था, आप ही ने उसे गिरा भी दिया। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया?
3: इसे तकदीर का खेल समझी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती।
4: आग लगा सकती हूँ, वजह नहीं बता सकती।
3: मैं वापिस जाने के लिए नहीं आई, पिताजी ने मेरी शादी कह सकती है इससे पहले कि आपके और मेरे दरमियान कभी नाचने वाली दीवार खड़ी हो जाए। चलिए कहीं भाग चले।
4: यह आपने कोई नई बात नहीं, आजकल की लड़कियां जवानी की ठोकर को मोहब्बत की मंजिल समझ लेती है, मगर मेरे नजदीक मोहब्बत की सही मंजिल माँ बाप के कदम है। वो लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अब आप चलिए।
0: सन 1950 में दिलीप कुमार फिल्म बाबुल में किस तरह अपने संवादों की अदायगी करते थे, ये हमने आपको सुनवाया। आइए अब 36 साल आगे चलते हैं और सुनते हैं सुभाष घई की फिल्म कर्मा का ये सीन।

0: सुभाष घई की फिल्म कर्मा में दिलीप कुमार ने क्या समा बांधा था, लेकिन बहुत कम लोगों को याद रह गया कि दिलीप साहब ने इस फिल्म में एक गाना भी गाया था। जरा एक अंश सुन लें, फिर आपको सुनवाते हैं सबसे पहले दिलीप कुमार ने किस फिल्म में कौन सा गाना गाया था।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने।
1: अरे बरसों से तो कहता आया, आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं, आई लव यू, सुबह सवेरे

ये सब सुनकर कहने का मन करता है, दिलीप साहब वी रियली लव यू। इस गाने को सुनवाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार ने सबसे पहले आखिर किस फिल्म में गाया था, किसके संगीत निर्देशन में गाया था और कौन सा गाना गाया था। दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1957 में निर्देशन की अपनी यात्रा शुरू की दिलीप कुमार के संग। ये फिल्म थी मुसाफिर। संगीतकार थे सलील चौधरी और इसी फिल्म के लिए दिलीप कुमार ने सबसे पहले एक गाना गाया। ये गाना गाया था उन्होंने लता मंगेशकर के साथ। सुनिए ये दुर्लभ गाना।

0: बरसों बरस तक दिलीप कुमार की पहचान रही वो भूमिकाएं जिन्होंने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया। दिलीप कुमार उदासी के शहंशाह थे और उन दिनों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं थे। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के संवाद सुने जाएं और इन फिल्मों की सरताज देवदास।
1: और मत पिया देवदास।
2: क्या?
1: कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे।
2: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है।

0: होश से कह दो कभी होश ना आने पाए।
1: यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं।
0: छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा।
2: बात दिलीप कुमार के ऐसे रोल्स की हो रही है जो उदास भूमिकाएं कही जा सकती हैं। सुनिए फिल्म दिल दिया दर्द लिया का ये संवाद। आपको सिर्फ इतना बता दें कि ये फिल्म एमिली ब्रोंटे के मशहूर नॉवेल वुदरिंग हाइट्स पर बनी थी और इसके निर्देशक थे अब्दुल रशीद कारदार, साल 1966।
3: ये औरत की मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा है भगवान? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हुआ है, जिसने प्यार को अपना धर्म समझा, जिसने दुख और तकलीफों को अपनी परीक्षा की अंगार समझकर अपना सब कुछ चुरा लिया? मैं हूँ वो बदबख्त मैं हूँ जिसकी आत्मा एक निशाचर की तरह दिन रात इन खंडरों में भटकती है, वो इन दीवारों से टकराती है, उसे किसी करवट एक पल चैन नहीं मिलता, और ये मोहब्बत के गुनाहगार सुख की नींद सोते हैं, ये सुख की नींद सोते हैं, दिन रात खुशियों से खेलते हैं और तुम्हारे चरणों में आकर अपनी पवित्रता का ढोंग रचाते हैं। क्या तुम इन पाखंडियों को अपनी शरण में जगह दोगे? क्या तुम इन पाखंडियों को माफ कर दोगे? औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा, उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए, फिर ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है? ये कौन है? मैं पूछता हूं, ये कौन है जो इस धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है? धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को, इसको कह दो कि यहां से चली जाए, धरती के उस कोने में जहां वैशी दरिंदे बसते हैं, जहां इंसानियत खुद अपनी लाश पर प्यार और शराफत के नाम का मातम करती है, इसको कह दो कि वहां चली जाए।
1: शंकर मैं यहां से चली जाऊं, हमेशा के लिए चली जाऊं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के कहती हूँ, बस करो शंकर।
3: हरगिज नहीं, तुम्हें इस दुनिया से वही मिलेगा रूपा जो तुमने इस दुनिया को दिया है। तुम इसी तरह रोगी, इसी तरह तड़पोगी, रात की तन्हाइयों में अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें चैन से मरने नहीं देगी और मैं तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं दूंगा। चल जाओ यहां से।
2: साल 1951, फिल्म दीदार का ये संवाद सुनिए। बात दिलीप कुमार के ट्रेजेडी रोलों की हो रही है।
4: गाना खत्म हो गया सरकार।
1: ओ, गाना खत्म हो गया? बड़ा दर्द है तुम्हारे गाने में कविराज।
4: दर्द का दूसरा नाम गाना है सरकार। मैं गाने की शक्ल में अपना दर्द ही गाया करता। चंपा, बड़ी सखी।

0: उनका एक ढेर हमारे गोदाम में बंद था। वाणी के पास दाम नहीं थे, वो मर गया।
1: मेरा भाई मर गया।
0: अपने हमदर्द भाई की मोहब्बत का ये बदला दिया मैंने उसे। अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। इन नापाक हाथों पर वाणी का मुकद्दस खून लगा हुआ है। ये दाग, ये धब्बे कभी नहीं धुल सकते। मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता।
2: हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं हैं। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, इंसानों में रहने के लायक नहीं हैं। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो, ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डाले।
0: मेरे साथियों के नाम और उनके पते हैं।
2: ये सब के सब मेरी तरह मुजरिम है, ये सब के सब मेरी तरह खूनी है। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं।
3: अब जरा दिलीप कुमार की कुछ कॉमेडी भूमिकाओं के अंश भी सुनवा लिए जाएं। गोपी फिल्म का ये संवाद।
4: पुलिस वाला कहाँ से आ गया? क्या
5: सुपरडेंट गुपरडेंट?
4: अरे क्या बकता है?
5: गुड मॉर्निंग।
4: छोड़।
5: गुड मॉर्निंग।
4: छोड़ हाथ।
5: गुड मॉर्निंग। 1 2 3 4।
4: अरे 1 2 3 4। मैं कहती हूँ 4।
5: अरे 1 2 3 4। 1 2 3 4।
4: तुमने थप्पड़ रखे।
5: एंटी फैन सेंटीमेंट।
4: क्या?
5: एंटी फैन सेंटीमेंट।
4: अरे हाथ सेंटीमेंट। बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला।
3: और ये संवाद फिल्म राम और श्याम से।
6: सॉरी जेंटलमैन, आई एम लेट। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ?
7: तुम नहीं जानते आज कागजात पर दस्तखत करने? बमन जी, कागजात पर साइन करवा लीजिए।
6: हाँ जोनी बाबा, तुम तो सच्चे लेटिव चो, तो जल्दी साइन कर दो। देख लो, और देख लो पर जल्दी। हाँ
7: तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे?
6: आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे? क्यों सर?
8: पर ये लोग तो बटाटा था, तुम आते और सिग्नेचर करके आए।
9: कौन लोग बटाटा था?
8: अरे यही लोग बटाटा था।
9: क्या बटाटा था?
8: कि तुम आते और साइन करते है कागज पर।
9: हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करता है साहब।
8: तो साइन नहीं करने का?
9: आई एम वेरी वेरी सॉरी। आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी।
8: तो बच्चे बताए तुम्हें खेल ले जाओ।
9: तुम्हें भी खेल ले जाओ।
8: होता था तो साहब जी का जेंडर बाबू।
3: अपने करियर में दिलीप कुमार का सामना कई नामी और दिग्गज कलाकारों से हुआ, लेकिन दिलीप कुमार उनके सामने हमेशा सशक्त नजर आए। फिल्म मुगले आजम, सामना पृथ्वीराज कपूर से।
10: तुम्हारी तमाम नादानियां और नाफरमानियां माफ की जा सकती और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो।
11: ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें?
10: यकीनन।
11: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है, नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नाम निशान खो देता है।
10: यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है।
11: और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता।
10: तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस असीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे।
11: मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूँ, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं।
10: मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघला कर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो।
11: और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं।
10: खामोश।
11: अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का

0: आदमी लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी।
1: इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्ज़िम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मां बदौलत मुजरिमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देंगे।
0: एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। जब मुअर्रख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहंशाह अकबर की मौत पहले होगी।
2: फिल्म शक्ति, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन आमने सामने।
3: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
4: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
3: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है, इसका फैसला अदालत में होगा।
4: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
3: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
4: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
3: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
4: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
3: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
2: सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक बार फिर हुआ राजकुमार और दिलीप कुमार का आमना सामना। आपको बता दें, इससे पहले दिलीप कुमार और राजकुमार सन 1959 में फिल्म पैगाम में आमने सामने आ चुके थे। फिल्म सौदागर।
5: हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह।
6: और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड।
5: वो तो था और है और हमेशा रहेगा।
6: वो रहे न रहे पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग।
5: राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह।
6: समझ गया। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब, जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ।
5: हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
6: बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम कहे शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा।
2: सन 1984 में यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में दिलीप कुमार ने एक ऐसा सीन किया जिसे सुने या देखें ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आंखें नम न हो जाएं।
7: सुधा, सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। नहीं, अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा।
8: ए भाई, ए, ए, ए भाई, ए भाई साहब, गाड़ियों का भाई, गाड़ियों का, बता भाई, ये सब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अस्पताल पहुंचा दो भाई, ए भाई साहब।
7: हाँ, सुधा, थोड़ी देर हिम्मत कर जा, मैं कुछ करता हूँ।

0: देखो यार, अरे देखो बेचारी मर रही है, अरे मर जाएगी, बचा लो रे। गाड़ी रोको, ए भाई साहब गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोको भाई साहब। ए भाई साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको उसको अस्पताल पहुंचाना है। भाई साहब वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मेहनत कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। भाई साहब आपके बच्चे जिए, भाई गाड़ी रोको, ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। ए भाई साहब, ए भाई साहब।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने अदाकारे आजम दिलीप कुमार के अभिनय की यात्रा से आपको रूबरू करवाया। आज का ये कार्यक्रम दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल संवादों से सजाया गया था। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयोग पसंद आया होगा। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्हें को दे प्याली में।
3: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम ये आकाशवाणी खंडवा है। अब जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। छिंदवाड़ा और नवगठित पांडुना जिले की आबोहवा में इन दिनों विकास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की नई बयार बह रही है। खेतों में लहलहाती उम्मीदों से लेकर पर्यटन के नए क्षितिजों तक और युवाओं के भविष्य को संवारने से लेकर आम जनमानस की सुरक्षा तक जिले में बहुत कुछ खास हो रहा है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली है। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में वन विभाग द्वारा व्यापक पौधरोपण अभियान का शंखनाद कर दिया गया है। जिले के हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस वर्ष दोनों जिलों में कुल 22,55,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मुख्य वन रक्षक कमल अरोरा के अनुसार हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई वन भूमियों को पुनः हरा भरा करने के लिए 3,69,000 सागौन के रूट शूट चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। मॉनसून की पहली बारिश के साथ शुरू हुआ ये महाअभियान जैव विविधता को समृद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जुनारदेव के वनग्राम कालीमाटी में गायत्री परिवार के तत्वावधान में 1100 पौधे रोपे गए। यहां वन विभाग की भूमि पर पंचमटी, त्रिवेणी और 9 पौधों की नवग्रह वाटिका स्थापित की गई है। वहीं परासिया में एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। वीरान पहाड़ी पर हरियाली लगाने के लिए सीड बॉल, गोबर और मिट्टी की गोलियों का उपयोग हो रहा है। बारिश में भीगने के बाद इन गोलियों के भीतर मौजूद बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र बबुआ यादव ने शनिधाम समिति को ये सीड बॉल भेंट किए हैं, जो कोल इंडिया की पूर्व सीएमओ डॉ. जयश्री राय द्वारा बेंगलुरु से मंगवाए गए थे। अब बात करते हैं माटी से जुड़े हमारे अन्नदाताओं की। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत परासिया विकासखंड के ग्राम उमरेट के युवा प्रगतिशील किसान संदीप पवार ने वैज्ञानिक खेती की एक शानदार मिसाल पेश

की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर हरी मिर्च, करेला और शिमला मिर्च का बंपर उत्पादन किया है। उन्होंने 11,50,000 रुपए की लागत लगाकर 24,75,000 रुपए की आय प्राप्त की है। उनका शुद्ध लाभ पूरे अंचल के किसानों के लिए एक नजीर बन गया है। दूसरी ओर मानसून की देरी से खरीफ फसलों की बोनी भले ही थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन कभी पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन का रकबा इस वर्ष बढ़कर 9,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। बारिश और जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान में छिंदवाड़ा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 132% हासिल करते हुए 64,000 से अधिक कार्य पूरे किए हैं। पांडुना जिले में भी इस अभियान का भव्य समापन जन भागीदारी के साथ हुआ। पांडुना के ग्राम पंचायत भवन तेगांव में जगन्नाथ नेत्रालय द्वारा एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 मरीजों की जांच की गई और 25 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया। अब बात करते हैं पर्यटन की, जो इस क्षेत्र की नई पहचान बन रहा है। तामिया के पातालकोट की वादियां इस बार अगस्त माह में पहली बार 3 दिवसीय सावन महोत्सव के गवाह बनेगी। पर्यटकों को यहां सावन के विशेष झूले, बैलगाड़ी की सवारी और हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वल्चर प्वाइंट, चीड़ प्वाइंट और छोटा महादेव में ट्रैकिंग के जरिए रोमांच का तड़का भी लगेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के लिए पांडुना के भूमा और जामसावली गाँव का चयन किया है, जहाँ होम स्टे विकसित कर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले के जामसावले स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर हनुमान लोक में इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित दर्शन कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की पहल पर 12वीं और स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अब महानगरों में MCA, BTEC और LLB जैसी उच्च शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार के मोर्चे पर छिंदवाड़ा ITI के एक प्लेसमेंट ट्राइब में 139 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 52 पुरुष और 87 महिलाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। इसके अलावा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांडुना के PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: FM बैंड 1.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजिनी। आज की प्रस्तुति मनीषा चौबे की।

0: लोक रंजनी।
1: लोक रंजनी कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों को स्वागत छे। आज कार्यक्रम लेकर आपका साथ छे आपकी बहन मनीषा चौबे। तो स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहन होन, अभी तो बारिश और झमाझम बारिश हुई रेल छे ना, को तो हम बहुत दिन से इंतजार भी करी रहा था। तो आप सब तो वावणी का काम में लगिज गया होगा, पर इन्हें वावणी का काम का साथ न खेती किसानी का काम का साथ में मनोरंजन भी तो जरूरी छे। तो आज सुना आपकी पसंद पर फरमाइशी निमाड़ी लोकगीत, ग्राम रतनपुर तहसील जिन्यासी, भागीरथ नायक, जितेन नायक, सुभाष नायक, रविन्द्र नायक, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन न उनका पूरा परिवार न एनाज गीत का पसंद करियो। ग्राम बगबुड़वा पथरिया सी नरेन नेताम न कुसुम नेताम न साथज घंटाघर चौक खंडवासी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, सनप्रीत, हेमेंद्र न अरु सनमती पंचोलिया न। तो आओ सुनाज आप सबकी पसंद पर यो निमाड़ी लोकगीत जेका गायो धर्मेंसर मंडल नारू साथी नन।

अब अगला फरमाइशी गीत को पसंद करने वाला भाई बहन छे जगन्नाथ पटेल, ज्योति पटेल, कमला पटेल, मन मानस न अंतिम पटेल न कनिका पटेल। ये ग्राम मोटक्का माफी जिला खंडवा शिवकोठी ओंकारेश्वर से राकेश, पप्पू सेन, निशा सेन न उनका परिवार ने न साथज इना गीत का पसंद करो। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ सी रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, ईछे ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, न सुहाना अरजान, नारू आबना अब्बासी न साथ इना गीत का पसंद करो। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार न जितेंद्र फुलवाला मालाकार न। तो आओ सुनाज आप सबकी पसंद पर यो निमाड़ी लोकगीत जेका गायोज बद्री प्रसाद शर्मा

अगला निमाड़ी लोकगीत का फरमाइश भेजीज। नंदानगर सुलगांव सी नंदराम मंशारे, हरी रिंकी रेखा रीना वर्षा राजकुमार मंशारे न समस्त मंसारे परिवार न साथ इना गीत को पसंद करियो डोंगर सिंह सावनेर ग्राम कपास स्थल तहसील बड़वा जिला खरगोन सी न

अगला गीत का पसंद करने वाला छे रिंगनी छत्तीसगढ़ से नीलेश वर्मा, दिनेश वर्मा न करुणा वर्मा न। साथ इना गीत की फरमाइश करी एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर सी स्वाति बाला खर्चे, परी खर्चे, ललिता खर्चे, बबीता, रेखा, शोभा नारू, पूजा रघुवंशी न। साथ इना गीत की फरमाइश भेजी अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, अब्दुल रहमान डावर, अब्दुल कादर डावर, हमजा डावर, तुलसीराम वर्मा न। साथ इना गीत को पसंद करो खंडवा रोड सनावत से अबरार इमरान, इरफान, वसीम, सोनू, साइदा, आयशा न सुल्ताना न। तो आओ सुना आप सबकी पसंद पर यो निमाड़ी लोकगीत जेका गायोज जीवन लता खेड़े नारू साथी न।

अगला गीत की फरमाइश भेजीज, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड इंदौर सीज, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, न गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे।

अभी हम सुन रहे था आपकी पसंद पर फरमाइशी निमाड़ी लोकगीत। अब हमारा कार्यक्रम को समय पूरा हुई रोज तो आज्ञा देओ आपकी बहन मनीषा चौबे को राम राम।

0: लोक रंजनी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी, प्रस्तुति मनीषा चौबे की थी। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है।

0: रंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निवाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में पहले सुनिए आशा भोसले और अदनान सामी का गाया ये गीत।

सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: इस संदेश के पहले आपने सुना गुलजार और रियाजुल रहमान की लिखी रचनाओं को अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में। मौसिकी अदनान सामी की थी। सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी खंडवा है। अब सुनिए राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी, आप सभी को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आवारगी इस एल्बम से, कैलाश खेर की आवाज, हसन रिजवी के बोल, संगीत नरेश परेश का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।

0: बजता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आंखों में तेरा ही चेहरा इस एल्बम का गाना, जय वालिया का लिखा और गाया हुआ संगीत ललित का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जोर की बरसात हुई, ये एल्बम का नाम है। जुबिन नौटियाल की आवाज़, गुरप्रीत सैनी के बोल और संगीत रोचक कोहली का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल। शब्दकार जानिसार अख्तर, संगीत भूपिंदर सिंह का और एल्बम शबनम।

आपके सावन, ये एल्बम का नाम है। शुभा मुद्गल की आवाज़, जयदीप साहनी के बोल, संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड, हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक

0: रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गाना है वारिस फिल्म से तलत महमूद और सुरैया की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत अनिल बिस्वास का। आज संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ। संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना। डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बहजाद लखनवी।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज में जासूस फिल्म का गाना बोल हैं इंदिवर के।

यादों की महफिल कार्यक्रम में संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए हुए गाने आज आपको सुनवाए जा रहे हैं। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में एहसान रिजवी के बोल हैं।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज विविध भारती के फेसबुक पेज पे जो इबारत हमने लिखी है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हिंदी सिनेमा के एक कामयाब अदाकार जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, जो अपनी भूमिकाओं को इतनी सहजता से निभाते कि ये समझना मुश्किल कि ये अभिनय है या वास्तविकता। किरदार कोई भी हो, हर किरदार को उन्होंने जीवंत कर दिया। उनका अभिनय लोगों के दिमाग पर ऐसा छाप छोड़ जाता है। एक अति संवेदनशील कलाकार जो ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी, उन्हें आप

0: अभिनय के पारसमणि भी कह सकते हैं। तो बताइए कौन सी फिल्मों के गाने आज आपको सुनवाए जाएंगे। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी फिल्मों के नाम भी लिख दिए हैं, गानों की लाइनें भी लिख दी है, और जिन शब्दों का जिक्र हमने किया है, एहसान, सितारे, वीर जवान, ख्वाब, शहर, मोहब्बत और हंसी मौसम, इन शब्दों को लेकर उन्होंने बहुत सारे गाने भी चुन लिए हैं। तो जो बातें हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजी है उसके बारे में एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि दिलीप कुमार जी के लिए एक प्यारा सा हमारा एहसास, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़ और उनका हुनर समय की धूल से कभी भी नहीं ढकता। वे हर बार किसी गीत, किसी दृश्य या किसी याद के बहाने फिर से हमारे बीच याद आ जाते हैं। शायद यही अमर होने का सबसे सुंदर अर्थ है। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दिलीप कुमार साहब को शत शत नमन, हर किरदार को जीवंत करने वाले कलाकार। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो पर्दे पर होने वाली घटनाएँ सब उनके साथ घटित हो रही है। और सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। तो चलिए एक एक कर हम उनके अभिनय से सजे जो गीत हैं वो आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले गंगा जमुना फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। इस गाने में जो अभिनय है उसकी, उसमें आपको क्या विशेषता नज़र आती है ये आप हमें लिख करके बता सकते हैं।
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन झा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

गीत भी खूबसूरत, संगीत भी खूबसूरत और फिल्म में अदाकारी भी बड़ी खूबसूरत, नृत्य तो देखने लायक। ऐसा लगता है कि कोई एक नौजवान मस्त मौला होकर के नृत्य कर रहा है। कुछ हमारे साथियों ने बातें लिखी है कि नैन लड़ जाई है, देहाती शैली की लोक नृत्य, धोती पकड़ कभी दाहिने तो कभी बाएं, सुंदर अभिनय है दिलीप कुमार का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि नैन लड़ जाई है तो मनवा में खटक हुई बे, गाने में दिलीप कुमार ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिल्कुल एक गांव के लड़के की तरह जो सहज और ऊर्जावान डांस किया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके बोलने का अंदाज, आंखों की भाषा और गंभीर आवाज ने गंगा के किरदार को बेहद जीवंत बना दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म है नैन लड़ जाई है, इस गाने गंगा जमुना फिल्म का गाना है, ये फिल्म का नाम है और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने में जो दिलीप कुमार जी ने नृत्य किया वो नृत्य यादगार है। चलिए धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आन फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का। इसमें दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आपको बताना है।

आन फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नादिरा। इससे पहले जो गंगा जमुना फिल्म का गाना हमने सुना, उसके बारे में हमारे एक साथी की ये बात है कि गंगा जमुना में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और लहजे को इतनी सहजता से निभाया कि पात्र बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हुआ। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो कलाकार जैसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिलीप कुमार के अलावा और कौन हो सकता है। वे हिंदी सिनेमा की बुनियाद थे, नींव थे। उनकी फिल्मों में मधुरता, उल्लास और उमंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। आज भी उनकी जब टीवी पर कोई फिल्म आ रही होती है तो हम सारे काम धाम छोड़कर बस उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। वो उनकी उड़ती जुल्फें, हल्की सी मुस्कुराहट कयामत ढाने के लिए काफ़ी है। तो आपकी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना सुनवा रहे हैं, कोहिनूर फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

कोहिनूर फिल्म का गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। कह सकते हैं कि जब संगीत की बात हो तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जो सच में संगीत के कोहिनूर कहलाते हैं। आज गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप ये जिक्र कर सकते हैं किसी भी गाने के बारे में या किसी भी सीन जो आपने देखा हो, दिलीप कुमार की फिल्म देखी हो, उनका कोई अभिनय किसी फिल्म में जो आपको पसंद आया हो, कोई दृश्य जो आपको पसंद आया हो, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं कि इस गीत में हमें ये चीज़ पसंद आई या ये जो सीन था इसमें हमें ये बात पसंद आई या इनके अभिनय में हमें ये बात बहुत ख़ास लगी। इन बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी महान अभिनेताओं का जिक्र करेगा तो दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले सम्मान के साथ लिया जाएगा। अपने सहज, गहरे और भावपूर्ण अभिनय से उन्होंने हर किरदार में ऐसी जान फूकी कि पर्दे पर अभिनय नहीं बल्कि जीवन दिखाई देता था। यही कारण है कि उन्हें ट्रेजेडी किंग के साथ साथ अभिनय का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि दिलीप साहब कि कितनी ही नई पुरानी फिल्में देखी हैं पर मशाल फिल्म का वो दृश्य मस्तिष्क पर अंकित हो गया जिसमें अपनी पत्नी की बीमारी की अवस्था में सड़क पर भटकते हुए जब वो मदद की गुहार लगाते हैं वो एकदम जीवंत और मार्मिक अभिनय हमें लगा। अब आपको सुनवाते हैं नया दौर फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की आवाज़ों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। और जो बात हमने आपसे कही कि किसी गाने का जिक्र आप कर सकते हैं, किसी दृश्य का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको बहुत मार्मिक लगा हो, बहुत जिसमें हास्य आपने अनुभव किया हो या जो आपको बहुत पसंद आया हो या उसकी क्या खासियत आपको लगी है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं।

ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र, यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुग़ल-ए-आज़म। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमति का सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का जमीन पर, ये एक कालजयी रोमांटिक गीत है। संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की। संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने कई फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमति फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है आप बताइए।

मधुमती फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनके एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगल आजम फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी। फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे ख़ास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आँखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार, तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देख कर ही महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आप बताइए।

बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान।

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप

कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज, संवाद आज भी याद किए जाते हैं, जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ, ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आंखों से अभिनय किया करते थे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, वहाँ सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है, आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहाँ देखने को मिलता। यूं ही नहीं उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

एक साथी ने लिखा है कि फिल्म संघर्ष का ये जो गीत है, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का ये किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत

इसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी। मेरी लिस्ट का ये पांचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सब के चहेते दिलीप कुमार साहब। यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूँगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी, जो उसमें जो कलाकार हैं वो वहीदा रहमान हैं, उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं, लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

लीडर फिल्म का ये गाना था। एक साथी लिखते हैं कि कर्मा फिल्म में जब दिलीप साहब देशद्रोही बने अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं, वो दृश्य इतना प्रभावित करता है कि मैं थिएटर में कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया था। एक साथी लिख रहे हैं कि वैसे तो उनका हर किरदार लाजवाब होता था, लेकिन फिल्म देवदास का किरदार मुझे बेहद पसंद है। दिलीप साहब के बाद कोई देवदास न बन सका, क्योंकि उन्होंने वो किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं, लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आँखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आज़ाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज़ है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये भी बताइए।

चलिए अगला गाना दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का ये गाना है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो है वहीदा रहमान।

सचमुच गीत में सागर की गहराइयाँ नज़र भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर महबूब खान दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को समझ सके। धन्यवाद। अगला गाना यहूदी फिल्म से, मुकेश की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

राहें चाहे पुरानी हो जाए, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी नाम पर। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ लोगों के नाम, चेहरे और बाहरी पहचान धुंधली पड़ जाती है। आज जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां उनका नाम भी ना जाने, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, उनके विचार और उनकी मधुर वाणी लोगों के मन में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में नाम, यश और प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, उनकी प्रशंसा करें, लेकिन समय की धूल बड़े बड़े नामों को भी ढक देती है। कई ऐसे लोग हुए जिनके नाम भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन उनके कार्य आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। सुंदर चेहरा और बाहरी आकर्षण स्थायी नहीं होते। उम्र के साथ चेहरा बदल जाता है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार और उसकी अच्छाई लोगों के हृदय में अमिट छाप छोड़ जाती है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने पर अधिक ध्यान देना नहीं चाहिए। केवल बाहरी रूप को संवारने पर हमें ध्यान देना नहीं

जब कोई व्यक्ति बार बार किसी का नाम लेता है, तो वो नाम उसके लिए मात्र एक संबोधन नहीं रह जाता, बल्कि उसकी भावनाओं, स्मृतियों और अनुभूतियों का केंद्र बन जाता है। सांसारिक जीवन में भी किसी प्रिय व्यक्ति का नाम मन में बार बार आना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति हमारे हृदय के बहुत निकट होता है, तो उसका नाम हमारी सोच, हमारी बातों और हमारी यादों में बार बार उभरता है। ये प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक हो सकता है। हालांकि जीवन का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि किसी एक व्यक्ति या भावना में इतना ना डूब जाए कि अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को भूल जाए। वास्तव में किसी का नाम जपते रहना उस व्यक्ति के प्रति सम्मान, स्नेह, श्रद्धा या प्रेम का संकेत हो सकता है।

हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी संतान जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जब कोई बच्चा मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ

लक्ष्य को प्राप्त करता है तब लोग उसके साथ साथ उसके परिवार की भी प्रशंसा करते हैं। नाम रोशन करना केवल बड़े पद या धन प्राप्त करने से नहीं होता है। एक अच्छा इंसान बनकर, दूसरों की सहायता करके, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज का नाम उज्जवल कर सकता है। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने अपने कर्मों से अपने माता पिता और देश का नाम रोशन किया है।

0: पालों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: पीपल

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग अदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को अब तक 25 से अधिक देश अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाज चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई के इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने पर खुशी व्यक्त की।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल NS राजा सुब्रमण्य सहित सेना और नौसेना प्रमुख भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनका शौर्य सदैव राष्ट्र सेवा की ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए, तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, वे मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढेंचा या सनई की बुआई हरित खाद के रूप में कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण करने और 70% से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का ही उपयोग करने की सलाह दी है। प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊगंज जिले के बिझोली गांव में एक किराए के मकान में चल रही अवैध सिंथेटिक ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। विंध क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,28,00,000 रुपये मूल्य का मादक पदार्थ, रसायन उपकरण और वाहन जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के तार मुंबई, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य शहरों तक जुड़े होने का खुलासा हुआ है। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच एक ट्रिप विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 जुलाई को दिल्ली से रवाना होकर 27 जुलाई को अशोकनगर पहुंचेगी, जबकि वापसी में 30 जुलाई को अशोकनगर से चलकर 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, कैंट, ग्वालियर और झांसी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक करीब 7 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से केवल 1% कम है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के निदान वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ने से फंसे 2 पर्यटकों को प्रशासन ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला। शिवपुरी में स्टेट बैंक RCT द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए CCTV और सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन का 13 दिवसीय निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग कैंप 9 जुलाई से शुरू होगा। नर्मदापुरम के इटारसी स्थित तवा नदी पुल की मरम्मत के चलते 16 जुलाई तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मैहर नेशनल हाईवे 30

पर डिगरा गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज

0: इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को

0: मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आप सुन

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार सी रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

लीजिए अब सुनिए नवरंग फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा भरत व्यास ने, धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल, आदि नारायण राव का संगीत है।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारी सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: जी डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल से पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
2: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगह से पता चला है।
1: लाइक कमेंट आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया,
2: जी इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं। और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
1: वक्त कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन

0: जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में, और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
1: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है।
0: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं, और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं। हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
0: देख तो रहे हम भी
1: जी,
0: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसके फेर में नहीं पड़ते हैं
1: जी।
0: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 दिन चले अढ़ाई कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं
1: जी। बिल्कुल
0: याद है आपको?
1: याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
0: टेढ़ी खीर,
1: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे।
0: कहा जाता है कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो होगा ही,
1: होगा ही।
0: ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ को मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलते ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो वो सीधे लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो
1: जी,
0: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
1: वैसे
0: थे।
1: ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते।
0: तो कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज परीक्षा होती है
1: बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे। जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं, कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए। और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास हो
0: जाता है,
1: मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज। आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह जो कि संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की किनारा कैपिटल नाम से।
0: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं.
0: अच्छा अच्छा. वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे? तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का.
1: कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है.
0: तो
1: और अब, जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ, दरअसल किस तरह से वो आगे बढ़ी.
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी.
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं. उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की. और हर ज़्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है. तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है. तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं
1: जी. ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है
0: जी.
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की है हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था. खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा.
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया. कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से MBA पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया. साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी.
1: बिल्कुल. और वहां उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी. तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा. लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं.
0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है. इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया. वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल. इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी
1: जी. और

0: उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक उन्हें अगर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल जो उनकी कंपनी है आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
1: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा
0: जी।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के सीआरओ सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल हैं कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
2: जी।
0: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। वो यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे। वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था, तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल। और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
2: चलिए।
3: हाय राम।

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नए घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें। और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है,
0: प्रसिद्धी
1: और
0: है, जी।
1: कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है
0: जी, तो और पड़ जाता है।
1: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया।
0: हाँ,
1: वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज

0: कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
1: कई बार सड़कों पर आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
0: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही है। एक गाना सुन लेते हैं,
1: चलिए
0: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे, दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद
1: तो
0: को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नज़र जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक
1: पहुँचाएँ हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है, अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई ये ही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं
1: जी।
0: वहां लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से
1: जी,
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं, असहमति थी
1: जी।
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई है,
1: मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर।
0: कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं।
1: हाँ, ये बात
0: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है। तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए
1: जी,
0: और
1: जी।
0: उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से जान लेते हैं कि हाँ ये किताब चर्चित है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि ये कहते हैं, वायरल होने का जुनून जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका एक कहना है
0: जी। बिल्कुल, तो वायरल होने के कुछ नुकसान

0: ज़्यादा है और फ़ायदे कम हैं, तो जो फ़ायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है। और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं। अभी जो हमारे घरों में दादी नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी पोस्ट करते हैं, और कुछ लोग अपना डांस
1: तो
0: का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
0: डांस का वीडियो ये दिखाते हैं कि हमें देखो, हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा, कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे,
0: मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया पर
1: नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचे, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल।
0: इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती है।
1: जी।
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी, बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना।
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव जरूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीजें जहां पर मिलती हैं, जहां पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता है
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है, लेकिन वहां भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहां पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि हम तो ठग गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को यह एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई बार लोग जहां पर मोल भाव नहीं करना चाहिए वहां भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी वालों से अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी है, तो वो जरूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो तो ठीक है, हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी वाले भी आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो, 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोल भाव क्यों कर रहे हैं, वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोल भाव नहीं करना चाहिए,
1: लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है।
0: बिल्कुल,
1: ये भाव ताव तो चलता ही, अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला, मोल भाव करना वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं, उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोचकर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहां जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात लिखी है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी, एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें
0: सुनते हैं
1: जी।

अब दीपा जी, हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल भाव किए जा रहे हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा ले तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें, कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना, अच्छा करी पत्ता भी डाल दो। वो फ्री में लेने में क्या मिलता है ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो

0: नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो 2 या 3 दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मोल
1: बिल्कुल,
0: भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप
1: पर
0: जरा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं
1: बिल्कुल, आज 1.5 चावल की खिचड़ी पक रही
0: कैसे?
1: है। देखिए, जहां पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है, नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहाँ जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है, या कुछ अलग थलग बात करता है, या अपनी, कहते ना, एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे
1: श्रोताओं ने
0: की
1: लिख भेजा
0: एक
1: है कि
0: टांग, ये भी एक
1: हाँ,
0: मुहावरा है।
1: ये भी एक
0: अब एक
1: मुहावरा।
0: श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल, ये भी होती है, जहाँ अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में 1.5 चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई, ये देखो, ये आ गया 1.5 चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और
1: जी
0: अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के, और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा, ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना। मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया, और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी। तो बात तो थी छोटी सी, लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं, जब जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की
1: जी
0: इस तरह के मुहावरे, तो वहाँ पे अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो। तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है,
1: जी
0: तो अर्थ बदल जाता
1: अर्थ
0: है।
1: बदल जाता है। और देखिए, यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है। ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में 1.5 चावल की खिचड़ी पकाते हैं। वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए। यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, पर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे मोल भाव के लिए, इन्होंने लिखा है,
1: जी
0: और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा, जाओ जाओ, पर अब नहीं करते, सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था, बहुत सारा तरह
1: जी
0: तरह के
1: जी जी
0: डिजाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रही पूरी की पूरी झुंड में है लड़कियां और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है, आइए भाभी जी आइए ले लीजिए, लड़कियां औरतें, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो
1: बिल्कुल,
0: ऐसे
1: ऐसे शहर, कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहां पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं, जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए, तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है, हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी, ये भी बता देना।

0: तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं, देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है
1: तो 100 रुपए में मिल जाएगा,
0: 100 रुपए में मिल जाएगा।
1: आज तो हम सब की हम आप भी खिचड़ी ही पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं खिचड़ी पका रहे हैं। अब कहीं हमारी एक श्रोता ने लिखा है, कारी कारे बादरा, सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा। सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा। तो सुन लेते हैं ये गाना।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनियाँ आएं और इतनी संतुलित बारिश लेकर आएं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी OTT प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसे अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं।
1: जी जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं NSD में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या FTI में जाऊं
1: जी,
2: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया, तो बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने MBA किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, आदमी फंस जाता है, तो उसमें फंस सा गया था।
1: अच्छा।
2: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
1: जी।
2: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
2: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी।
2: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीटेड माय MBA।
1: अच्छा।
2: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है। मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच, मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा।
2: सो 2.5 साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन,
1: पहली बार आए तो एक नौकरी के लिए आए,
2: नौकरी के लिए।
1: अच्छा।
2: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी
1: जी।
2: तो फिर 2000 मैंने स्विच

0: किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था 2 साल ऑलमोस्ट, वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला
1: जी। ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
0: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है। लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था
1: जी,
0: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है।
1: हाँ।
0: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की

0: गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
1: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
0: हाँ
1: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
0: हाँ
1: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
0: वाह,
1: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: ये
0: गाना।
1: एक बहुत खूबसूरत सा गाना है।
0: आइए सुनते हैं।
2: जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल
0: हाँ
1: के लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी और रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस, तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप

0: भी ज्यादा होते हैं.
1: हाँ.
0: सेम थिंग हैपन बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months.
1: अच्छा.
0: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल. वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया. उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार. कभी लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था.
1: हाँ.
0: तो वो सब करते करते बट मैंने मूछ बढ़ाई और अच्छा. मैं थोड़ा फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं.
1: जी जी.
0: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा.
1: अच्छा.
0: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला.
1: अच्छा.
0: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया.
1: जी.
0: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के. पहले सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे.
1: जी.
0: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया. तो वो मुझे समझने काफी मिला. आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं.
1: जी, जी.
0: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग जैसे आवापुर में अभी बात कर रहे हैं,
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसको कहते हैं. तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला. ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसे लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग. तो ये मुझे वहां से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही. तो दैट वाज माय स्टार्ट इन द मुंबई.
1: क्या बात है. और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
0: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो. इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते. मराठी मेरी मदर टंग है.
1: जी जी.
0: मी मराठी है. बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की. तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा. मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहां जहां मुझे लगा. जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो.
1: जी.
0: और बाकी जगह शायद ये लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है. लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है.
1: हाँ.
0: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है इसलिए वो साथ में काम करता है.
1: जी.
0: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में.
1: जी.
0: तो वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई. आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूँ, मैं मराठी कर सकता हूँ. बट आई वुड लव टू एक्सपांड माय थिंग. मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले.
1: जी.
0: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊँ.
1: हाँ.
0: बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर.
1: चलिए यहाँ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का. कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ.
1: जी.
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है. लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है.
1: बहुत खूबसूरत गीत है.

0: काम करते आ रहा हूँ रेगुलर, सो
1: अच्छा
0: दैट इज थिंग।
1: चलिए यहाँ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ।
1: जी
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
1: ओहो,
0: गाना है।
1: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं। जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये
1: हाँ
0: मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता है ना।
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी
1: जी
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था। कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो भी वाकया जो है कि पहली
1: जी
0: फिल्म कैसे मिली।
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चा साहब के जवानी मैंने सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी,
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ
1: डिपेंड है।
0: यस
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफी दिन। फिर हमें नहीं बोलना पड़ा, बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा। और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ता
1: मना करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस
0: हाँ
1: हिसाब से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
0: जी, अनाज का
1: अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहां पे लोग आके उस पर धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
0: हाँ
1: कि ये काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे ही एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
0: जी
1: अनाज, तो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा।
0: हाँ
1: तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
0: अच्छा
1: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
0: जी
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप

0: वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा.
1: अच्छा.
0: मुकेश चावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है. और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था. सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था.
1: जी, जी.
0: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता.
1: बिल्कुल.
0: तो दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माई लाइफ. तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते होंगे.
1: हाँ, हाँ. बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था
0: जी,
1: इसमें सारे बड़े नाम
0: बहुत,
1: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
0: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर. तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ.
1: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है. और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए.
0: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है.
1: हाँ,
0: अगर
1: हाँ.
0: आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है
1: जी,
0: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया. तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं. जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं.
1: जी जी.
0: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था.
1: हाँ, हाँ.
0: हमारा शो और उनका शो KBC और वो
1: हम जी, जी.
0: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात करने का. तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा
1: जी.
0: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है. वो फील था वो अलग ही था. तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा. और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है.
1: अच्छा.
0: जैसे अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, पहले एक मिनट बात करनी है.
1: हाँ.
0: तो वो आए, पटन साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से. वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए. मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में.
1: हाँ.
0: अरे क्या हो गया?
1: अच्छा.
0: सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं.
1: हाँ.
0: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले. He laughed the same way, the way you laughed.
1: अच्छा अच्छा.
0: डर वाला मुझसे होता नहीं है.
1: यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे?
0: हाँ. बिल्कुल. मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टूगेदर्स में.
1: हाँ.
0: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे.
1: Oh.
0: I love that song. It starts with हम बंदे हैं प्यार के. तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा.
1: चलिए सुनते हैं.

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार, और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है। मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई। ए के वर्सेस ए के नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी
0: हाँ,
1: वो। मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी
0: जी
1: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो ए के वर्सेस ए के मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी,
0: हाँ
1: रितेश देशमुख
0: हाँ
1: साहब थे वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी।
0: जी
1: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी। जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ, कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक वो
0: हाँ
1: एक फिल्म थी। और एक ताज़ा खबर नाम के वेब
0: वेब
1: सीरीज
0: सीरीज
1: जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
0: जी
1: तो उसके साथ की थी। वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा। नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जेडी चक्रवर्ती साहब,

0: ऐसे मैं कुछ सोच रहा था। हालांकि राजी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे।
1: हाँ
0: और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया
1: हाँ
0: कि डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था।
1: जी
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे, रंजीत सर ने बताया कि मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं,
1: हाँ
0: काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है।
1: बराबर।
0: देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई वर्क विद हिम। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम ऑल्सो।
1: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग-अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
0: जी
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है,
1: हाँ
0: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की। आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है।
1: जी
0: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है
1: हाँ
0: आगे, और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
0: डेडलाइन
1: एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही
0: होना
1: है।
0: ही है।
1: जी
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख है तो उस वक्त आपको पहुंचाना है, और आपके पास में बहुत सारा काम होता है
1: जी
0: बिकॉज
1: जी
0: महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी।
1: जी
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक वो था वागले की दुनिया।
1: हाँ जी
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये
1: जी
0: दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का। तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात है।
0: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौसी, भारती आचरेकर,
1: जी
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे
1: जी जी
0: वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स हैं,
1: बिल्कुल
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था,
1: अच्छा।
0: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा ही अपने आप में मुझे
1: ये मुझे
0: पसंद।
1: लगता है 2022 की बात है।
0: जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी,
1: हाँ
0: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है, वो
1: हाँ
0: शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा,
1: अच्छा
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने
1: बिल्कुल
0: वाले। तो
1: बिल्कुल
0: कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है बट आप उसको शूट करके भेज दो।
1: जी
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले मैं जब आया था 2013 में ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल
0: आज ऐसा हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
1: अपना
0: आप ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहे
1: जी
0: हैं
1: जी
0: वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता
1: वो
0: था।
1: दर दर भटकने वाली बात है वो।
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है।
1: हाँ
0: कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, दूसरा नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या? नहीं, कोई कोई काम नहीं है।
1: ओह
0: तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था, वो
1: हाँ
0: सफर है,
1: अच्छा
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
1: हाँ
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब
1: बराबर
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ है,
1: हाँ
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा, बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात है। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उनपे फिल्माया हुआ गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: है, क्या
0: गया
1: बात है।
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता
1: हम दोनों
0: चला।
1: फिल्म का गाना है,
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत है।
0: बेहद लोकप्रिय
1: आइए सुनते हैं।
0: जी।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे।
1: जी
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था
0: जी
1: कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें,
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमित्रा ये करते हैं, सुमित्रा ये करेंगे, हाँ ये
0: हाँ
1: करेंगे। जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
0: जी,
1: क्योंकि
0: आपने
1: मैंने
0: बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था।
0: मनोज नाम था
1: मनोज
0: उसका,
1: वागले मेरा,
0: उसका नाम
1: मनोज
0: था।
1: वागले मेरा नाम था।
0: जी,
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था,
0: हाँ
1: मुझे बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए कि
0: हाँ
1: जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ। सभी हम लोग सभी
0: जी
1: से
0: जी
1: सीनियर
0: जी
1: हैं। और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहाँ से आवाज आती थी, अरे
0: हाँ
1: दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो बहुत
0: जी
1: बचपन से काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: फास्टर फेने वो
0: हाँ
1: शो किया करते थे 80s में शायद।
0: बिल्कुल,
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और उन्होंने
0: हाँ
1: उतना ही प्यार दिया।
0: आपको पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने।
1: अमेजिंग इट वाज, मतलब
0: हाँ
1: पहला शॉट सुमित्रा के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमित्रा के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
0: अच्छा,
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ
1: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा,
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है
0: अच्छा
1: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये

0: थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है मेरा, जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले, जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
1: हाँ हाँ,
0: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था, तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं है
1: बहुत बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं।
0: जी जी जी,
1: और बहुत विनम्र होते हैं,
0: बहुत विनम्र होते हैं। इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो, किस पे चला रहे हैं कुछ
1: जी, जी, जी।
0: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित्रा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता, लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूँ कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूँ अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर
1: जी,
0: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
1: अच्छा,
0: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर से तू आया कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये सीन नहीं है। आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरा और उनका सीन है वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे।
1: अच्छा,
0: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
1: जी,
0: वो ज्यादा मैटर करती है।
1: बिल्कुल,
0: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है, या मराठी में आवंडा गेड़ा समझो अपन,
1: एक घूंट लेने की जो एक
0: प्रक्रिया वो है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा था,
1: प्रयास करना
0: पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए। लेवल तो पहुंचने की बात ही नहीं करता, शी इज सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली
1: जी,
0: बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर मैं। मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है, इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ
1: जी,
0: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए तो ही मजा आएगा। तो आई यूज टू हैव इट फॉर एन आर टू आर, मैं लिखता था, खुद मैं लिखता हूँ जितने भी लाइन्स आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज टू राइट इन माय वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना पाटेकर साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार।
1: जी जी,
0: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है
1: जी,
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है
1: जी।
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक पारिक, और उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था। एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया
1: जी, जी।
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
1: अच्छा,
0: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया, ये हमारा दोस्त है। तो लोग यकीन नहीं करते थे कि ये तेरा रोज कहां से आ गया। नागपुर का तो नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
1: अच्छा,
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा।
1: अच्छा,
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक

0: आर्टिस्ट है,
1: अच्छा
0: दिखता बिल्कुल आपकी तरह। मैंने बोला अच्छा।
1: अच्छा
0: मैंने बोला किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है, वागले की दुनिया,
1: हाँ
0: उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है,
1: अच्छा
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है। मैंने बोला अच्छा।
1: जी,
0: मैंने बोला सर काम अच्छा करता है क्या?
1: हाँ
0: अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा।
1: अच्छा
0: बोला चलो नाम तो नहीं खराब कर रहे। आई
1: क्या
0: लाइक
1: बात,
0: दैट, आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में,
1: हाँ
0: उनको बताया कि ये वही है। ब्रो ने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या करोगे
1: जी
0: आप?
1: जी ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
0: जी
1: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते
0: मीन जैसे
1: हैं।
0: ट्रू ट्रू।
1: जी, तो ऐसा ही वाकया आपके साथ हुआ
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्या?
0: ऐसा ही हुआ।
1: हाँ
0: और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
1: हाँ
0: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात है,
1: और क्या चाहिए,
0: और क्या चाहिए।
1: क्या बात है।
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छा लगा,
1: हाँ
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा। और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार
1: क्या
0: है।
1: बात
0: मैंने
1: है।
0: एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए
1: हाँ
0: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी, रामजी लंदन वाले। ये
1: अच्छा हाँ
0: बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें US में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
1: अच्छा
0: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं
1: अच्छा
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
1: ओहो
0: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पर सब दिया जाता है।
1: हाँ
0: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे आप मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है,
1: हाँ
0: गाड़ी देंगे आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं, मैं
1: हाँ
0: अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ, तो
1: हाँ
0: मजा तो वही है।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे, दैट
1: क्या बात है।
0: इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था, है अपना दिल तो आवारा।
1: हो आइए सुनते हैं।

अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम हैं आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

बड़े खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें, हैं जब तक ये सांसें।

हवाओं में गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, यह है आकाशवाणी खंडवा। आइए सुने NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।

0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
0: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
0: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
0: जी,
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं बिमलेश जी से।
0: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी बिमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
0: जी
1: बिमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
0: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
0: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
0: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
0: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
0: जी
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800044055 पर और

0: हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए

0: सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ
7: आओ चलो।

0: तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो, नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखा

0: पर नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
1: ओ।
0: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
2: पापा पापा वो देखिए, एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
2: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
3: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
2: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
3: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
2: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
3: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
2: तो फिर चलिए।
3: हाँ तो आओ, चलो आओ, खाते रहो।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।
1: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
0: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
0: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहली पूछो।
1: पूछिए।
0: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
1: हर साल पानी चढ़ता है।
0: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं?
0: हाँ।
2: अजीब सी बात है।
0: हार गए?
1: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
0: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
0: देखिए, नील नदी में 2 नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है, पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है, साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र

0: के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
3: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वह क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
7: उमंग। उमंग, जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

0: हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और आज के कार्यक्रम का होस्ट हिमांशु। लेकर हाजिर हूं हमारा आज का क्रम जो कि है हमारे शहर। लेकिन हमेशा की ही तरह हम बढ़े हमारे क्रम की ओर। उसके पहले जान लेते हैं सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है वो यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। और आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं उस अमरवीर को जिसने अपने अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान से भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। भारतीय सेना के वीर अधिकारी कैप्टन विक्रम बत्रा। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जब दुश्मन ने भारतीय चोटियों पर कब्जा करने का प्रयास किया, तब भारतीय सेना के जवानों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। उन्हीं वीरों में से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने .5140 और बाद में .4875 जैसी रणनीतिक चोटियों पर दुश्मन के खिलाफ साहसिक अभियान का नेतृत्व किया। कठिन परिस्थितियों और लगातार हो रही गोलाबारी के बीच उन्होंने अपने साथियों का उत्साह बढ़ाया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विजय के बाद उनका प्रसिद्ध संदेश "ये दिल मांगे मोर" पूरे देश में वीरता का प्रतीक बन गया। 7 जुलाई 1999 को एक साथी अधिकारी को बचाने के प्रयास में कैप्टन विक्रम बत्रा ने सर्वोच्च बलिदान दिया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी असाधारण वीरता, नेतृत्व और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र भारत के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज भी कैप्टन विक्रम बत्रा का जीवन हमें संदेश देता है कि देश की सेवा, साहस और कर्तव्य निष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। विक्रम बत्रा के साहसपूर्ण जीवन पर आधारित शेरशाह फिल्म 2021 में रिलीज हुई। इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। किरदार से याद आती है रंगमंच की दुनिया की। आज हमारे साथ युवा रंगकर्मी कश्यप खान जुड़े हैं। कश्यप रंगमंच की दुनिया से आते हैं, पिछले कई वर्षों से रंगमंच में सक्रिय हैं। युवा रंगकर्मी हैं, देश की कई नामी निर्देशकों के नाटकों में अभिनय किया है और उन नाटकों की प्रस्तुतियां आए दिन देश भर में होती रहती हैं। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल से प्रशिक्षित हैं और खुद भी भोपाल से आते हैं। इन दोनों रंगमंच से जुड़ी अपनी एक प्रस्तुति परक कार्यशाला के चलते हमारे शहर खंडवा में उपस्थित हैं। तो चलिए सुनते हैं युवा रंगकर्मी कश्यप खान से हिमांशु दुबे की बातचीत। नमस्कार, आज हमारे साथ उपस्थित हैं रंगकर्मी कश्यप जी।
1: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
0: तो कश्यप जी, चूंकि आप एक रंगकर्मी हैं, तो आपकी रंग यात्रा कब और कैसे शुरू हुई?
2: मैं मध्य प्रदेश में भोपाल जिले का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश और परवरिश भोपाल की ही है। मैं जब स्कूल में था तभी मैंने ये निर्णय ले लिया था कि मुझे रंगकर्म करना है। मुझे कहीं से इसके बारे में जानकारी मिली थी और कुछ नाटक मैंने उस दौरान देखे और उस दौरान कई लोगों से मिलना हुआ और मैंने अपनी रंगकर्म की यात्रा भोपाल शहर के ही एक ग्रुप द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के साथ शुरू की, जिसको प्रीति झा तिवारी मैडम और मेरे उस्ताद तानाजी राव चलाते हैं अभी भी।
0: चूंकि रंगकर्म, जिसे हम थिएटर भी कहते हैं, क्या आप बताएंगे कि थिएटर में काम करते हुए आपका सबसे खास अनुभव कौन सा रहा?
2: मेरे लिए तो बहुत सारे अनुभव हैं जो खास हैं मेरे लिए और उनमें से किसी एक को चुन पाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन हम जब आते हैं रंगमंच में तो अपने शौक को पूरा करने के लिए आते हैं। हमें कहीं से कुछ मोटिवेशन मिलता है और हम चाहते हैं कि ये काम हम करें और हम आते हैं और शुरुआत होती है। लेकिन रंगकर्म जब आप पूरी शिद्दत से, दिलचस्पी से और ईमानदारी से करते जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर तब्दील होती जाती हैं। एज अ ह्यूमन आप बहुत सारे अंदर से चेंज होते जाते हैं। वो सारी जो घटनाएं होती हैं जो आपको बदलने के लिए जिम्मेदार होती हैं, वो सब बड़ी दिलचस्प होती हैं। तो यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे मिले, उनकी बातें सुन के, उनकी विचारधाराएं जान करके मुझे भी बहुत सारी चीजें अंदर एक टकराव जैसा पैदा हुआ। वो सब कुछ ही बड़ा दिलचस्प था। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक मनोरंजन का काम नहीं है रंगमंच, बल्कि वो आपको परिवर्तित करने के लिए, एक अच्छे इंसान की तरफ ले जाने के लिए भी बहुत जरूरी कर्म है। तो ये इस तरह की जो भी घटनाएं वो मेरी जिंदगी में बहुत ही खास है और बिल्कुल मैंने ऐसा अनुभव किया है।
0: कश्यप जी, जैसे आज का जो समय है वो एक तरीके से सब कुछ डिजिटल की तरफ ले जा रहा है। रंगकर्म जिसे हम कहते हैं या थिएटर जिसे कहते हैं, ये एक तरीके से लाइव विदा होती है। अपने अपना जो शौक था रंगकर्म, इसको बरकरार रखा और अपने शौक को ही अपना व्यवसाय बनाया। और व्यवसाय बनाते समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
2: चुनौतियां तो हर पेशे में ही होती हैं, मैं उन चुनौतियों को ऐसे अलग से नहीं देखता हूँ। इसमें भी थी। आप जब शुरुआत में किसी भी पेशे में दाखिल होते हैं तो वहाँ अपने पेशे के चैलेंजेस होते हैं जो आपके सामने आते हैं समय समय पर, जिसमें से एक सबसे बेसिक सा चैलेंज आपका पैसे की लड़ाई को लेकर ही होता है। क्योंकि आप एक ऐसे फेस में होते हैं शुरुआती दौर में जब आप काम सीख

0: रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस वक्त पे उतना कुछ मानदेय नहीं मिलता है, आपको सारा कुछ अपनी जेब से ही लगाना होता है। और अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके लिए चैलेंजेस वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो मेरे साथ भी रहा, लेकिन मैं उसको बहुत अलग तरह से नहीं देखता हूँ, ये एक तरह से इस यात्रा का हिस्सा ही है। लेकिन अगर आप शिद्दत से जुटे रहें और अपने काम पर भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें और अपने गुरुओं की बात मानते चलें, तो आगे चलकर आपकी ये सारी समस्याएं धीरे धीरे घटती जाती हैं। और कब आप इस शौक को एक व्यवसाय में बदल देते हैं आपको खुद नहीं पता चलता है। तो ये जरूरी है कि आप लगातार जुटे रहें, लगे रहें और बेहतर सीखने के लिए हमेशा हर दिन अग्रसर रहें, तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, चीजें बदलती हैं।
1: कश्यप जी, यदि कोई युवा अपना करियर थिएटर में बनाना चाहता है, वो रंगकर्मी बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए?
0: मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण जब मैं कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी संस्थान से जाके ही प्रशिक्षित हों। आपके अपने तरीके हो सकते हैं तालीम हासिल करने के, वो हो सकता है आप किसी थिएटर ग्रुप के अंडर में रह के करें, या आप किसी एक उस्ताद से सीखें, या खुद से भी आप सीखें, लेकिन वो सीखना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी अप्रोच सीखने वाली है तो जरूर आपके लिए वो अच्छे रिजल्ट दे सकती है आगे चल के। मेरे केस में ऐसा हुआ, शुरुआत में एक ग्रुप के साथ लगातार काम करता रहा, मैंने एक दशक लगभग उनके साथ काम किया, और फिर मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि आपको जाके कहीं प्रशिक्षण लेना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है इस काम को आगे और बेहतर करने के लिए, खुद को और तराशने के लिए। बस इसी लालसा में मैंने कई सारे संस्थानों के इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए, जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ है, और हमारे राज्य का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा संस्थान है मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय। हर जगह कोशिश कर रहा था, फिर फाइनली सिलेक्शन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के बैच में हो गया, और वहां रह के मैंने 2 साल प्रशिक्षण लिया, और अभी 1 साल मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के रंग प्रयोगशाला का छात्र हूँ। मेरे साथ और भी 9 लोग हैं, हम कुल 10 लोग हैं, और हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की जो रंग प्रयोगशाला है, ये एक बहुत ही नई चीज है, अभी इसका ये 3रा साल है, और अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो ये रंग प्रयोगशाला जो है, बेसिकली ये बैचेस जो रेपिटरीज होती है, इसका मॉड्यूल है ट्रेनिंग का, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसी एक चीज है। यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है कि 2 साल आपने जो भी कुछ सीखा है अपने बैच में रह के, उसको आप कैसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपना एक रास्ता, अपना एक तरीका काम करने का बना सकते हैं। उसी के तहत इस वक्त मैं खंडवा में आया हुआ हूँ। हमारे सारे साथी अलग अलग 5 जिलों में गए हैं, मुझे खंडवा भेजा गया है। खंडवा को इस बार मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय ने चुना है, तो मैं अभी इस वक्त यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर विजय सोनी जी के साथ, उनके संस्था के साथ मैं काम कर रहा हूँ। एक कार्यशाला चल रही है, 25 दिन की ये कार्यशाला है, और इस कार्यशाला के अंत में हम एक प्रस्तुति करने वाले हैं 18 जुलाई को, जो कि किशोर कुमार सभागृह, वहां पे शाम 7 बजे होनी है। तो इस कार्यशाला में मैंने 18 बच्चों के साथ मिलके जो भी कुछ काम किया है रंगमंच के तरीकों से, और बच्चों के चीजों को मैंने उसका आधार बना करके एक प्रस्तुति बनाने की कोशिश करी है, उसको हम 18 तारीख को यहाँ खंडवा के दर्शकों को दिखाएंगे। और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, और मैं चाहता भी हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों। टिकट जैसे कोई इसके अंदर चीज नहीं है, आप निःशुल्क है, आ सकते हैं, देख सकते हैं, हम सब स्वागत करते हैं आपका। तो
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे युवा रंगकर्मी कश्यप खान से हिमांशु दुबे की बातचीत। अब बढ़ते हैं हमारे आज के क्रम की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभव का नाम है। हर शहर अपने भीतर हजारों कहानियां, अनगिनत यादें और अपनी एक अलग पहचान समेटे होता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के एक ऐसे शहर में, जहां इतिहास भी है, संस्कृति भी, व्यापार भी, और लोगों के दिल में बसने वाली सादगी भी। जी हाँ, आज का जो हमारा शहर है वो है राजकोट। राजकोट का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। यही वह शहर है जहां गांधी जी ने अपने बचपन का एक महत्वपूर्ण समय बिताया। आज भी गांधी संग्रहालय उनकी यादों को संजोए हुए है। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास की किताबें जीवंत हो उठी हो। राजकोट सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं, यह शहर आधुनिकता परंपरा का खूबसूरत संगम है। चौड़ी सड़कें, सुंदर बगीचे, व्यस्त बाजार और लोगों की मीठी बोली हर आने वाले का दिल जीत लेती है। अगर आपको प्रकृति पसंद है तो लाल परी झील की सुबह और शाम का नज़ारा बेहद मनमोहक है। वहीं रोटरी डॉल्स म्यूजियम में दुनिया भर की गुड़ियों का अनोखा संग्रह देखने को मिलता है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत आकर्षित करता है। दोस्तों, अब वक्त है एक प्यारे से गीत का।

दोस्तों, यात्रा का असली मज़ा तब आता है जब उसमें स्थानीय स्वाद भी शामिल हो जाए। राजकोट का खान पान हर खाने के शौकीन का दिल जीत लेता है। सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी से हो, दोपहर में स्वादिष्ट गुजराती थाली और शाम को ढोकला, खांडवी थेपला, घाटिया या मसाला चाय, हर स्वाद अपने आप में खास है। राजकोट की मिठास सिर्फ उसके व्यंजनों में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के व्यवहार में भी झलकती है। मेहमानों का स्वागत मुस्कुराकर करना यहाँ की खूबसूरत परंपरा है।

दोस्तों, अगर खरीदारी का शौक रखते हैं तो राजकोट के स्थानीय बाजार आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। बंधनी की साड़ियाँ, पारंपरिक गुजराती ड्रेस, चूड़ियाँ, हस्तशिल्प और खूबसूरत आभूषण यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, राजकोट त्योहारों का शहर भी है। यहाँ नवरात्रि का उत्सव पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। रंग बिरंगे परिधान, गरबा की थाप और लोगों का जोश देखते ही बनता है। इस तरह उत्तरायण यानी पतंगों का त्यौहार पूरे शहर को रंग बिरंगी पतंगों से भर देता है। आसमान से उड़ती पतंगे और छतों पर गूंजती खुशियां राजकोट की पहचान बन जाती है। और जब बात गुजरात के किसी शहर की हो तो हम गरबे के गीत को कैसे भूल सकते हैं।

खेल की दुनिया में राजकोट का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ का आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम देश विदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। राजकोट की एक और खासियत है यहाँ की उद्यमशीलता। छोटे बड़े उद्योग, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्माण में भी यह शहर अपनी मजबूत पहचान रखता है।

दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह सफ़र पसंद आया होगा। अगर कभी गुजरात जाने का मन मौका मिले तो गुजरात की गलियों में जरूर घूमिए, वहाँ के स्वाद का आनंद लीजिए, इतिहास को महसूस कीजिए और वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी को दिल से अनुभव कीजिए। दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछे थे, आइए जान लेते हैं उन प्रश्नों के उत्तर को। हमारा जो पहला प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो इसका उत्तर है शशिकांत दास जी। और आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न था कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका उत्तर है राजीव कुमार। अब आपके रेडियो दोस्त हिमांशु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओ, आपने सुना युववाणी कार्यक्रम FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार। लीजिए श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़।

घर घर की कहानी। इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे, ये हसर जयपुरी का गाना था। किशोर कुमार और साथियों की आवाज़, संगीत कल्याण जी आनंद जी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का एक और गाना अब आपको सुनवाते हैं। ये भी समा की ही बात लिए हुए है, लेकिन आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म इज्जत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से श्रोताओं, विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत। रफी साहब की आवाज में गीत फिल्म नाइट इन लंदन।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, अब वो सदाबहार गीत आप तक पहुंचाते हैं जो बारिश के दिनों में अनायास ही याद आ जाता है। जी हाँ, फिल्म मिलन का ये गाना है मुकेश और लता जी की आवाज़ में।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं। ये संगीतकार ओपी नैयर की कंपोजिशन है फिल्म मेरे सनम से, और आवाज मोहम्मद रफी की।

0: FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए दिल्ली से सुने हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच

0: व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSE सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
5: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
4: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
5: क्यों?
4: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
5: वो कैसे?
4: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
5: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
4: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
5: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
4: आप कब आ रहे हैं?
5: आकाशवाणी खंडवा आरोप।

0: तो फिर सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: मेरी आश की अब तुम ही हो।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: हम बने हैं साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा की। ट्यून कीजिए FM बैंड 101.2 MHz या डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर
1: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। 20 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के पीथमपुर में चीनी कंपनी के नए विनिर्माण संयंत्र का करेंगे भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान करोड़ों भारतवासियों का है और भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक व आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य की साझा दृष्टि का उल्लेख किया।
1: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

0: ने आज दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। श्री शाह ने बताया कि 1994 में अधिसूचित 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में अब तक 5,000 हेक्टेयर को वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और जल्द ही पूरे क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में पीपल, बरगद, नीम, गुलर, अर्जुन और जामुन जैसे दीर्घजीवी पेड़ लगाकर रिज को दिल्ली के ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादकता मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। उन्होंने प्रति एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य तय करने की भी बात कही। वहीं दूसरी तरफ श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रगति कार्यक्रम के तहत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो एक गांव में 100 से 200 किसानों के साथ मिलकर कृषि कार्य में बदलाव लाने का काम करेंगे।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस भेंट में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित प्रदेश की परियोजनाओं और योजनाओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। ये चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी का 20 एकड़ में विकसित होने वाला नया संयंत्र है। इस प्रोजेक्ट में करीब 27 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6,500 एक्सकवेटर के निर्माण की क्षमता विकसित की जाएगी। कंपनी 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है, जहां 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर का उत्पादन होता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में लंबित प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सपाक्स संस्था के अधिवक्ताओं ने मांग की कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक राज्य में सभी पदोन्नति प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाए। संस्था ने विधानसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों पर भी आपत्ति जताते हुए इन्हें न्याय संगत नहीं बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इसे अधिक लंबा नहीं खींचा जा सकता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश की मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त दवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त स्वास्थ्य धनराजू एस ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे, जहां हाई एंड तकनीक से दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही दवाओं का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 190 तहसीलदार एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियमित पदोन्नति दे दी है। ये पदोन्नति मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इनमें कक्षा 5वीं में 80.42% और कक्षा 8वीं में 74.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा और पुनः परीक्षा को मिलाकर कक्षा 5वीं का कुल परिणाम 98.89 और कक्षा

आठवीं का 98.19% रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के 22 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, शूटिंग और घुड़सवारी सहित विभिन्न खेल विधाओं में क्वालिफाई किया है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी और टीम सदस्य जूट से तैयार विशेष परिधान पहनेंगे। इसे वस्त्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से विकसित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत इस पहल का उद्देश्य जूट उद्योग को नई पहचान देना और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को बढ़ावा देना है। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में अपने प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को फिलहाल लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत पूरी होने तक ये फीचर

जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से विकसित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत इस पहल का उद्देश्य जूट उद्योग को नई पहचान देना और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को बढ़ावा देना है। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में अपने प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को फिलहाल लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत पूरी होने तक यह फीचर देश में शुरू नहीं किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महापौर मालती राय ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजधानी भोपाल के 3EME सेंटर में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंडवा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम और विधिक सहायता की जानकारी दी गई। नीमच में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने सपरिवार संकट मोचन हरकियाखाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सीहोर में RTE के तहत निजी स्कूलों की खाली 1651 सीटों पर तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अशोकनगर कलेक्टर ने साप्ताहिक जनसुनवाई में 408 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित पुल और रपटों पर ड्रॉप गेट लगाने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर लंबित पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। झाबुआ में डायरिया से बचे हर बार अभियान के तहत ग्राम कालापीपल में जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में श्वानों के लिए कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग किया गया है और भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाले बैरसिया नरसिंहगढ़ मार्ग पर पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। SDM आशुतोष शर्मा ने नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए ये आपातकालीन आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ईछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को स्वागत है आपका अपना कार्यक्रम में। न आज का कार्यक्रम में आपका साथ है आपकी बहन स्मिता बरोले। तो सभी भाई बहनों को हमारी राम राम। भाई बहनों होनी बारिश को दौर चली रोज, कहीं रुकी रुकी ना तो कहीं तेज बारिश हुई रही। न नदी तालाब न झरना बहना लगी गया, खेत नमा फसल न भी लगी गई, न किसान भाई कृषि कार्य नमा लगे छे। भाई बहनों होनी जहाँ ये मौसम फसल न अन्न उत्पादन के लिए उपयुक्त छे, वहां अभी इना समय हम पेड़ पौधा भी लगाई सकाए। नौका लेना हम अपना घर का आसपास खाली जमीन पर या अपना घर का सामना बाग बगीचा होए तो उनमें पौधा लगाई सकाज। एमा हम फल वाला पौधा औषधीय पौधा लगाई सकाज। एक काशी वृक्ष न की संख्या बढ़ेगा न हरियाली फैलेगा। भाई बहन नहनी बसो भी हम ख प्रकृति न कितनों कुछ दियोज। नौका बदला हम अपना स्वार्थ का लेना हरा भरा वृक्ष न ख काटी भी राज। निरंतर पेड़ कटने से घना वन कम होता जाए राज। घना जंगल नम रहना वाला जीव जंतु न जानवर कम होता जाए राज। न वन न को

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: भाई बहनों, अब आपसे पूछ लेवांज आज को प्रश्न, हमारा आज को प्रश्न छे कि सोयाबीन की फसल में खाद एवं उर्वरक की अनुशंसित मात्रा कितनी होनी चाहिए। प्रश्न एक बार फिर से सुनी लो, सोयाबीन की फसल में खाद एवं उर्वरक की अनुशंसित मात्रा कितनी होनी चाहिए। इना प्रश्न को उत्तर तो हम आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन कार्यक्रम का अंत में। भाई बहनोहणी, अथर्व वेद में कहो गयो कि हमारी धरती माता छे, न अधिक उत्पादन का लेना, रासायनिक उर्वरक, न कीटनाशक, न निंदा नाशक का निरंतर उपयोग करीन हम करी रहा, जे काशी तात्कालिक लाभ तो हुई रहो पर धरती की उत्पादन क्षमता कम होती जा रही, न फसल न पर बीमारी, न कीट, न को आक्रमण भी बढ़ना लगी गयो। धान गेहूं फसल चक्र से भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरतो जाइरोज, कीटनाशक न का उपयोग से भूमि में विद्यमान सूक्ष्म जीव केचुआ आदि की क्रियाशीलता व संख्या कम होती जाइरीज, जेका सी भूमि को भौतिक न रासायनिक न जैविक संतुलन बिगड़ी रहोज। एक साथज भाई बहनोहणी, हम ख प्राकृतिक खेती की ओर जानू चाहिए, ना प्राकृतिक खेती अपनानू चाहिए। प्राकृतिक खेती को सिद्धांत छे कि जमीन को स्वास्थ्य मजबूत करो, जमीन का को स्वास्थ्य मजबूत होएगा तो पौधा स्वयं स्वस्थ होएगा, न कीट बीमारी सी न मौसम की विपरीत स्थिति न सी लड़ना में वो सक्षम होएगा। प्राकृतिक खेती में पहले ज वर्ष पैदावार पूरी नहीं मिलती है, ई खेती के लिए कोई भी चीज बाजार से खरीदनू नहीं पड़ता है, जेकासी लागत तो कम होएगा, पैदावार भी विषमुक्त होएगा। एकासी खेती सी 3 से 4 वर्ष में भूमि को कार्बन स्तर 0.1 से बढ़ीकर 0.8 तक हो जाएगा। प्राकृतिक कृषि में जल की आवश्यकता कम पड़े क्योंकि अक्षादन का कारण वाष्पोत्सर्जन कम हो, न पौधा की दिशा उत्तर दक्षिण एम रखी जाए, जेका से सूर्य को प्रकाश अधिक समय तक मिलज, एम अंतर्वर्ती या सहयोगी फसल भी ली जा सकज, जेका से मुख्य फसल पोषण व कीट नियंत्रण में सहयोग मिलज। प्राकृतिक खेती में जहरीला रसायन को अभाव रहे तथा आक्षादन का कारण नमी व सूक्ष्म जलवायु की अनुकूल परिस्थिति का कारण जमीन में केचुआ की संख्या न बढ़ज,

0: केचुआ जमीन खोदज जे कासी छेद उमा होता जाए वो कासी वापस वो नहीं आता है बल्कि दूसरा छेद उमा बनावज। इस प्रकार केचुआ जमीन में विचरण सी संख्या असंख्य छिद्र बनाता जाए जे कासी जमीन का अंदर ऑक्सीजन प्रभावित हो न लाभकारी जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो कासी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ज। तो भाई बहनोहणी हमख प्राकृतिक खेती की ओर बढ़नू चाहिए। न भाई बहनोहणी ये तो थी हमारी आज की बातचीत। न भाई बहनोहणी अब सुनी लेवाज एक भेंटवार्ता विषय छे खरीफ फसल न समसामयिक कार्य इना विषय पर हमने बातचीत करी ग्राम काकरिया का पवन पटेल सी। तो सुनाज ई भेंटवार्ता। भाई बहनों राम राम। फोन इन कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ग्राम काकरिया के पवन पटेल जी से जो एक प्रगतिशील कृषक है और इनसे हम बात करेंगे खरीफ फसलों के बारे में कि अभी खरीफ फसलों में उन्होंने क्या क्या बोया है और उसमें क्या कृषि कार्य चल रहे हैं। पवन पटेल जी राम राम।
1: राम राम सभी किसान भाइयों को भी राम राम।
0: पवन पटेल जी अब ये जानना चाहेंगे कि अभी खरीफ का मौसम है और आपने मतलब अभी बारिश भी हो चुकी है और अभी आपने कौन कौन सी फसलें बोई है उसके बारे में बताएं।
1: अभी बहुत सारी फसलें किसान भाइयों ने बो रखी है। मैंने भी स्पेशली कपास सोयाबीन ज्वार मकई मक्का और तुअर भी काफ़ी क्षेत्र में लगी हुई है
0: जी। अभी ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आपने कपास और सोयाबीन ये सभी फसलें बोई है खरीफ की तो इसमें क्या कृषि कार्य कर रहे हैं और अभी किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य क्या बातें।
1: अभी लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में बोनी का काम लगभग हो चुका है और फसलें 10 से 15 दिन की भी हो गई है, कहीं कहीं पर 5-7 दिन की भी है। तो लगभग अभी जो मेनली प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार की। तो खरपतवार नियंत्रण पर काम चल रहा है जिसके लिए कुछ किसान भाई दवाइयों का भी छिड़काव कर रहे हैं खरपतवार नाशक का और बाकी निंदाई गुड़ाई का काम भी हो रहा है, मजदूरों के द्वारा भी करवाया जा रहा है। तो अभी बेस्ट मैनेजमेंट जो है वो उसी का हो रहा है, खरपतवार का ही हो रहा है। बाकी थोड़ा बहुत खाद वगैरह का भी काम चल रहा है, थोड़ा सा एनपीके यहाँ स्पेशली कहूँ तो नाइट्रोजन की अभी फसलों को ज़्यादा ज़रूरत है शुरुआती दौर में। तो वो किसान भाई सभी यूरिया का जो है छिड़काव कर रहे हैं और इस तरीके का कार्य चल रहा है
0: जी। खरपतवार की बात की जाए तो अभी मतलब जो सोयाबीन की फसल है या कपास की फसल है तो इनमें किस प्रकार का खरपतवार देखने को आता है और उसका जो नियंत्रण है हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में बताएं।
1: खरपतवार मेनली क्या होता है कि आपकी जो पुरानी फसल है उसके भी अगर बीज उग गए हैं तो अभी आज हमारे करंट फसल के लिए वो खरपतवार ही है
0: जी।
1: तो उसको हम दवाइयों के छिड़काव से भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली कभी कभी क्या होता है सकरी पत्ती के चारे होते हैं, चौड़ी पत्ती के चारे होते हैं या दोनों मिक्स भी कहीं खेतों में मिल जाते हैं। ज़्यादातर जनरली हर खेत में लगभग अब फैल चुकी हैं उनकी वेराइटीज़ और बीज, तो लगभग दोनों तरीके के चारे मिलते हैं। तो दवाइयाँ आजकल मार्केट में अवेलेबल है, केमिकल दवाइयाँ जिसमें कि सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों का स्प्रे कर किया जा सकता है और प्रबंधन किया जा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है खरपतवार और इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो फिर किसान उसको निंदाई गुड़ाई करवा के मैनुअली भी निकाल सकते हैं।
0: इसका जैविक नियंत्रण भी कर सकते हैं।
1: इस तरीके का जैविक नियंत्रण अभी बारिश के टाइम में पॉसिबल नहीं है, इसको गर्मी में अगर प्रैक्टिकली किया जाए तो थोड़ा सा पॉसिबल है कि हम बारिश आने से पहले खेत में थोड़ा सा पानी दे दें या बुवाई हो जाए उसके बाद हम उसकी निंदाई गुड़ाई कर दें, तो इस तरीके का मैनेजमेंट हम उसमें कर सकते हैं
0: जी। पवन जी ये तो खरपतवार नियंत्रण की बात हो गई और जैसे फफूंद जनित रोग भी हो जाते हैं फसलों में तो उसका भी नियंत्रण कैसे कर सकते हैं।
1: बहुत तरीके हैं फफूंद स्पेशली बारिश के मौसम में आती है, जब ह्यूमिडिटी हाई होती है और मौसम में नमी होती है हल्की सी तब फफूंद के पैदा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि ज़मीन में नमी कम रहे या फिर बारिश के वजह से अनफॉर्चुनेटली अगर हो ही रही है नमी तो फिर उसके लिए हम बहुत सारे केमिकल्स आ गए, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं बहुत सारे जिसको हम ज़मीन में डालकर ज़मीन के फफूंद को भी ख़त्म कर सकते हैं, पौधे के ऊपर स्प्रे करके पौधे को भी ख़त्म कर सकते हैं
0: जी। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम बोनी करें तो बीजों को उपचारित
1: जी बिल्कुल उस समय में जो बीज जनित बीमारियां होती हैं जो हमारे यहाँ अपने हम जैसे जनरली खाते हैं कभी कभी मूंगफली हम खाते हैं, मूंगफली का कोई दाना हमारे मुंह में चला जाता है जो इस तरीके का जो हमको कि कड़वा लगता है
0: जी,
1: तो वो एक तरीके का फफूंद होता है जो बीज के अंदर अपने आप पनप जाता है, वो जनरेट हो जाता है नमी के कारण
0: जी।
1: तो इस तरीके के जो फफूंद होते हैं वो हर बीज में हर मतलब हर

0: कि हर तरीके के बीजों में उपलब्ध होते हैं, उनको मारने का यही बेस्ट तरीका है कि हम बीज उपचार करें और फफूंदजनक से बीज उपचार करके फिर उसकी बुआई करें।
1: जी। और पवन जी, अभी जैसे बारिश का मौसम है, तो अगर हम जल संचयन की बात करें तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि जल संचयन बहुत जरूरी है। जल संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम देखते जा रहे हैं कि गर्मी के दिनों में काफ़ी टेम्परेचर हाई आता है, वाटर लेवल भी बहुत डीप चले जाते हैं, तो फिर किसान को प्रॉब्लम होती है। शहरों में भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, किसानों को भी खेतों में पानी देने के हिसाब से प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसके बेस्ट तरीके यही है कि कहीं पर कोशिश हो सके तो थोड़ा सा छोटा मोटा पोंड बनवा लें, या अपने आसपास मेड़ में ही थोड़ी सी गहरी खुदाई करके डीप करवा लें जिससे कि पानी का संचयन हो सके, या एक ऐसा रास्ता बनाए जो हमारे खेत से होकर नाले तक और नाले से होकर किसी बड़े तालाब या नदी तक सोर्स चला जाए जिससे कि वाटर लेवल डेवलप हो।
1: जी
0: बेसिकली पानी को हमको वेस्ट नहीं करना है, पानी को हमको ऐसी जगह पर नहीं ड्रॉप कर देना है जहाँ से वो वाटर लेवल को इंक्रीज़ नहीं कर सके। तो कोशिश करें किसान भी कि अपने स्तर पर जो भी छोटा मोटा हो सके, हर व्यक्ति के पास जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के हिसाब से वो जल संरक्षण कर सकता है।
1: जी और जैसे अभी मानसून में बारिश भी कभी तेज हो जाती है, तो इससे जो फसलें हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है?
0: जी बिल्कुल, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। कुदरत का तो नियम ही ऐसा है कि अगर तेज आएगा तो सबको नुकसान पहुंचाएगा, वो फिर शहरों में भी समस्या देखने को मिलती है और गांव में भी देखने को मिलती है। फसलों में इस तरीके की चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम होती है कि आपका खेत किस तरीके का, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो पानी को फिर बहुत दिन तक सोखे रखता है और फिर वो हमारे फसलों पर उसका डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। और
1: जी
0: अगर हल्की मिट्टी है, जैसे कि लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, जो कि पानी को बहुत ज़्यादा दिन तक सोख के नहीं रखती है, छोड़ देती है, तो फिर वहाँ पर हमको थोड़ा सा कम असर देखने को मिलता है। फिर ये फसल टू फसल भी वेरी करता है, किसी फसल पे पानी का ज़्यादा प्रभाव दिखता है, किसी फसल पे कम दिखता है, तो इस तरीके की समस्याएं तो बिल्कुल बनी रहती हैं।
1: तो अभी जो पानी की स्थिति अभी वो फसलों के हिसाब से ठीक है?
0: हाँ अभी ठीक है, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ क्षेत्रों में कम भी हो सकती है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन एवरेज अगर हम निकालें तो अभी पानी ठीक कंडीशन में है।
1: जी
0: मतलब जितना गिर रहा है उतना पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है।
1: जी ये चीज़ और आ रही है कि अभी वन महोत्सव चल रहा है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक,
0: जी
1: तो इसमें जो वन महोत्सव के लेके कार्यक्रम भी हमारे यहाँ पर हो रहे हैं जगह जगह पे, पूरे देश में समझो हो रहे हैं,
0: जी
1: तो हमारे हम मतलब वन महोत्सव को कार्यक्रम को सार्थक कैसे बना सकते हैं, या उसके लिए हम किसान क्या कार्य कर सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि अगर किसान उसमें सहयोग करेंगे तो 90% किसान उसमें सहयोग कर सकते हैं। पूरा ओवरऑल जो वन महोत्सव जो निकल के आएगा, उसका जो डाटा निकल के आएगा, उसमें 90% किसानों का रोल है, क्योंकि हर किसान के पास अपनी स्वयं की ओन ज़मीन है, तो वो आसपास जितनी भी मेड़ है वहाँ पर पौधे लगा सकता है। और इस सीज़न में सबसे बेनिफिशियल ये है कि आपको पौधे की ज़्यादा केयर नहीं करनी है, आपको एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है, जो एनवायरनमेंट में जो बारिश हो रही है उसी से उस पौधे का काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो जंगली जानवर घूमते रहते हैं जिनको कि चारे पे जो डिपेंडेंट है, वो भी आपके खेत तक उतना रीच नहीं कर पाते क्योंकि इजीली उनको कहीं पर भी चारा मिल जाता है। तो हर तरीके से वो पौधा आज के एनवायरनमेंट में सुरक्षित हो, अगर 5-6 महीने या साल भर आपने उसको प्रोटेक्शन में रख लिया अपने कि कब उसको पानी लग रहा है, कब थोड़ा सा खाद दे दिया। हम जो हमारी फसलों को देते हैं मेड़ पर, हम देते देते पहुँचे, थोड़ा सा खाद अपन ने उस पौधे में भी डाल दिया। इस तरीके का अगर मैनेजमेंट करें तो मेरे हिसाब से वन महोत्सव को किसान भाई सफल बना सकते हैं, और सबसे बेस्ट सीज़न है ये अभी वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करने का। अब इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो पौधे हम लगा रहे हैं वो हमारे बेनिफिट्स के पौधे हों, हम कोई फल फ्रूट के पौधे लगा दें, आम लगा दें, है ना, नारियल अपना नींबू लगा दें, या इस तरीके के और भी जो पौधे जो जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है तो वो भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि हाँ सेजवान के लगा सकते हैं, जैसे मेडिसिनल भी उसका यूज़ है, तो इस तरीके के भी प्लांट्स आप लगा सकते हैं जिसका मेडिसिनल यूज़ है। तो उससे क्या होता है कि आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा और किसान उसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा ये कुछ भ्रम फैले हुए हैं कि पेड़ पौधे लगाने से ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, या वो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको उसकी जड़ें खींच लेती है, तो थोड़ी जो कम गहरी जड़े जाने वाले पौधे हैं उस तरीके का भी आप चयन कर सकते हैं। अगर आपको पानी को लेके प्रॉब्लम है और उर्वरा शक्ति को लेके प्रॉब्लम है तो इस तरीके का मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक अच्छा, सबसे अच्छा बेनिफिट्स वनीय पौधों का ये है कि आप अगर मेड़ पे लगाते हैं तो आपकी फसलों को वो हवा से भी सुरक्षित रखते हैं
1: जी।
0: जब भी कोई तेज हवा चलती है या आपकी फसल में पानी दिया गया है, जमीन में नमी है, तो फसल के लेट जाने के जो चांसेस होते हैं उसको भी वो कम कर देते हैं। बहुत हद तक आपके डायरेक्ट आने वाली हवा को भी रोक लेते हैं। और जो इन्वायरमेंट में दूसरे भी जैसे वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, जिनके स्पोर घूमते रहते हैं, तो उनको भी कुछ हद तक आपकी फसल तक आने से वो

0: इस तरीके के फायदे अपने को डेफिनेटली पहुंच जाते हैं।
1: जी पवन पटेल जी, और आप अंत में हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे इस मानसून को लेके, इस खरीफ सीजन को लेकर?
0: मानसून को लेके और खरीफ सीजन को लेके मैं किसान भाइयों से इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो किसानों की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कभी भी वो निराश नहीं होते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहकर काम करते रहते हैं। कभी मुनाफा कम कभी मुनाफा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो अन्नदाता है, अन्नदाता का जो कर्तव्य है वो आप अच्छे से निभाएं और हमारे देश को प्रगति करने में सहयोग प्रदान करें। बस इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद
1: पवन पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी दी हुई जानकारी से हमारे किसान भाई जरूर लाभ लेंगे ऐसी हम आशा करते हैं। नमस्कार। भाई बंडोहणी, अभी हम सुनी रहा था भेंटवार्ता विषय तो खरीफ फसल नम समसामयिक कार्य, इना विषय पर हम बात करी रहा था ग्राम काकरिया का पवन पटेल से। भाई बंडोहणी, अब आपका बताए देव आज का खंडवा उपज मंडी से प्राप्त कृषि उपज न का भावना की जानकारी। सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 6,142 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहा 6,912 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहे 2,400 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहे 2,681 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहे 5,200 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहे 5,899 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहे 2,000 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहे 2,151 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहे 5,200 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 5,895 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव रहे 6,800 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 7,185 रुपया प्रति क्विंटल। भाई बहन नोहनी, ये तो था खंडवा उपज मंडी से प्राप्त कृषि उपज नका भावना की जानकारी। न भाई बहन नोहनी, आप जानी लो आज का मौसम को हाल। आज सूर्योदय प्रातः 5:47 पर हुई और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। आज का दिन को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहे और रात को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। तो भाई बहन नोहनी, तो था मौसम की जानकारी। न अब सुनी लेवाज एक निमाड़ी लोकगीत जेखा गायो हेमलता उपाध्याय और साथी नाना।

भाई बहन नोहनी, अभी हम सुन रहा था इनिमाड़ी लोकगीत। भाई बहन नोहनी, किसान भाईना न खरीफ की फसल न बोई देज, साथ सोयाबीन की कम व सीधी फैलने वाली किस्म न ख, कतार सी कतार की उनकी दूरी 30 सेंटीमीटर व पौधा सी पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा, उपयुक्त पौधा संख्या 3,33,000 पौधा प्रति हेक्टर रखनु चाहिए। सोयाबीन की मध्यम फैलने वाली किस्म न ख, कतार सी कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौधा सी पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा, 81 उपयुक्त पौधा संख्या 2,22,000 पौधा प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। भाई बहन नहुनी, जो भाई अभी बोनी करी राज वो ये बात को ध्यान रखी सकज। एका साथ मूंग व उड़द की फसल में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा। एका साथ मक्का की जल्दी पकड़ने वाली प्रजाति नमक कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर न पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखा। अरहर की शीघ्र पकड़ने वाली प्रजाति नक की कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रखा। किसान भाई ये बात को ध्यान रखी सके न। भाई बहन नहुनी, अब सुनी लेवाज एक अरुणी माड़ी लोकगीत जे खगाय कैलाश सिंह अरुण साथी नना।

भाई बहनोहनी, अभी हम सुनी रहा था इनिमाड़ी लोकगीत। भाई बहनोहनी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछे थे एक प्रश्न कि सोयाबीन की फसल में खाद एवं उर्वरक की अनुशंसित मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इना प्रश्नों को उत्तर छे कि सोयाबीन की फसल में पोषक तत्व का हिसाब से सोयाबीन मध्यम आवश्यकता वाली फसल छे। टिकाऊ उत्पादन लेना हेतु अनुशंसित गोबर की खाद की मात्रा 5 से 10 टन हेक्टर और 2 से 10 टन हेक्टर मुर्गी की खाद का साथ प्रयोग कर सकन, जेमा एक साथ संतुलित मात्रा में नत्रजन, स्फुर और पोटास गंधक को उपयोग कर सकन। सोयाबीन की फसल में सभी पोषक तत्व को प्रयोग के अनुशंसा

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। अगला प्रसारण राष्ट्रीय विविध भारती सेवा से किए जाएंगे।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नरेश मिश्रा की लिखी झलकी मुंशी इतवारी लाल। निर्देशन है विनोद रस्तोगी का।
1: राजन की अम्मा पांचों उंगली घी में और
2: ए राजन के बाबू
1: भागमा तनी बगल में बैठ जाओ। अरे प्रेम से बतियाओ,
2: बात करने का टाइम नहीं है। बात बात में तुम जरूरी बात भूल जाओगे।
1: कौन सी बात?
2: बस रह गए ना वही मिट्टी के माधो। पूछो कैसे
1: कैसे।
2: देखो आहारे बेहारे लज्जा ना कारे।
1: काहे की लज्जा? अरे बेटवा हमारा है, दहेज हम छाती ठोक कर लेंगे।
2: और का, बैल बेचो या बेटा ब्याह हो, सौदा पहले पक्का कर लो।
1: मगन रहू चोला, पक्का वादा कम न ज्यादा।
2: आम नींबू और बेटी के बाप का गला दबाओ तभी उसमें रस निकलता है।
1: अरे इसमें भी कोई शक है?
2: तुमने हंस के बात की तो बात नहीं बनेगी।
1: तब का गुस्सा से बात करूं?
2: अरे नहीं जी, तनिक कड़े पड़ कर बात करना।
1: ठीक है, कड़ा रहूंगा अकड़ा रहूंगा।
2: रामपाल को हमारा राजन पसंद आ गया है।
1: अपना राजन किससे कम है भाई, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करता है।
2: ओ देदार है, इकलौता है, लाड़ प्यार में पला है।
1: मगन रहू चोला,
2: ऐसा घर पर मिले तो हम घर द्वार बेचकर बेटी के हाथ पीले कर दें।
1: अरे हमें कौन बेटी के हाथ पीले करने हैं राजन की अम्मा, हमें तो बस अपनी गोट पीली करनी है। हाँ, वैसे मुर्गी मोटी है, सोने का अंडा देती है।
2: और का, रामपाल का सारे जबार में नाम है, वो ईंट भट्टे का मालिक है।
1: मगन रहू चोला, कहो तो भट्टा ही मांग ले।
2: अरे भट्टा मांगोगे तो भट्टा बैठ जाएगा, हमें तो नगद नारायण चाहिए, जेवर चाहिए।
1: अच्छा और सामान चाहिए।
2: वो रामपाल आ रहे हैं, संभल कर बात करना, मैं चली अंदर।
1: आइए आइए रामपाल जी। हाँ भैया, 20,000 का फलदान हो।
3: लेकिन वो
1: 10 थान सोने का जेवर, 4 थान चांदी के जेवर, 5 बनारसी साड़ियाँ और
3: माफ कीजिए, मैं सौदा नहीं संबंध करने आया हूँ।
1: कैसा सौदा? आपका सिर्फ गाल बजा के बेटी ब्याहना चाहते?
3: मैंने ये तो नहीं कहा, पान फूल जो भी पन पड़ेगा वो।
1: भैया पान फूल तो देवता प्रसन्न होते हैं।
3: दहेज ही सब कुछ नहीं होता भैया, मेरी बेटी गुनों की खान है अपने।

0: मुझसे क्या कहना, आप राजन बाबू से ही पूछ लीजिए।
1: राजन से? वह आपकी लड़की को कैसे जानता है?
0: दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं।
1: मगन रहू चोला, भैया राजन को लड़की पसंद है तो हमको लेन देन पसंद है
0: जी।
1: आप हमारा दहेज दे दीजिए, लड़का आपका हो गया।
0: दहेज तो मेरे बस का नहीं है।
1: वाह वाह, दहेज आपके बस का नहीं है। फसल मैंने बोई, उसे जतन से पाला पोसा, जब फसल तैयार हो गई तो आप मुफ्त में हथियाने आ गए।
0: भाई साहब आप मेरी बात।
1: जाइए जाइए, कोई दूसरा दरवाजा खटखटाइए, दहेज का भाव पता चलेगा तब लौट कर आइएगा। हाँ मगन रहू चोला, भागमान तनी अपने बेटवा के बात सुन ले।
2: का है राजन?
1: लाडले अब ब्याह नहीं करेंगे। हाँ
2: काहे हो?
1: हमने रामपाल से सीधे मुँह बात नहीं की।
2: अच्छा, का हम लड़की वाले हैं जो सीधे मुँह बात करें?
1: अरे जिसकी हजार गरज हो हमसे आकर बात करे। हाँ
2: कहने को भट्टे वाले और दिल गोरसी के बराबर भी नहीं।
3: अम्मा मैं भट्टे के साथ ब्याह नहीं करूँगा, मेरी पसंद भी तो कोई चीज है।
1: मगन रहू चोला, सुनती हो राजन की अम्मा, अब अपने घर में भी कलयुग आ गया है।
4: हाँ भाई कलयुग को छोड़ो तुलारे भाई, कलयुग को छोड़ो, ये बताओ कि भाई तुम्हारी दुकान पर खाद कब आएगी भगवान के फसल?
1: अरे आइए आइए मुंशी जी। हाँ। खाद सब गोबर हो गई।
4: अरे अम्मा भाई क्या कहते हो, गोबर की खाद होती है, खाद का गोबर कैसे हो गया भगवान के फसल से? है बोलो।
2: हमारे तो कर्म फूट गए।
4: भाग फूट गए
2: बेटा, बात काटना सीख
4: गया। भाई राजन ये मैं क्या सुन रहा हूँ भगवान के फसल से?
3: मुंशी जी मैं अपनी शादी के बारे में आंख बंद नहीं कर सकता हूँ।
1: हमने क्या आंख बंद करके शादी ब्याह किया?
4: भाई देखो दुलारे भाई देखो, हमारे तुम्हारे ब्याह का जमाना गया। अब शादी ब्याह में लड़के लड़के की जो पसंद है ना वही पहली होती है भगवान के फजल से।
2: राजन के बाबू।
1: हाँ भागमान।
2: सुना तुमने, राजन अंग्रेजी ब्याह करेगा।
1: मुंड हूँ आग का तो हूँ को नहीं। भैया हम तो अब गांव से चले।
4: अब भाई कहाँ चले भगवान के फजल से, कहाँ चले?
1: अब हम काशी बास करेंगे मुंशी जी।
2: राजन के बाबू हमको भी साथ लेते।
4: अरे भाई नहीं नहीं नहीं नहीं, देखो भाई दुलारे भाई, दुलारे भाई। हाँ देखो भाई मैं कहता हूँ कि तिल को तार बनाने से क्या फायदा है, पहले भाई मुझे राजन से बात कर लेने दो। है हो सकता है भाई कि उसके भी कुछ अरमान हो भगवान के फजल से।
2: आप बात कीजिए। हाँ हमें अब राजन से क्या लेना देना।
4: अच्छा भाई राजन आओ बेटे आओ भाई, देखे तुम्हारी शिकायत भी सुन ले भगवान के फजल से।
1: कहिए रामपाल जी, दहेज का बाजार देखिए।
0: जी हाँ देखाया, अब तो इसी घर नैया पार लगेगी।
1: अच्छा हुआ ऊंट ने पहाड़ देख लिया।
0: भाई साहब आपकी शरण आया हूँ, वहाँ गए की लाज रखिए।
1: अरे आप मेरी लाज रखिए, मैं आपकी रखूंगा।
0: मुझे नकदी और जेवर देना मंजूर है।
1: मगन रहू चोला, सामान भी देना होगा, आपको बिरादरी ऊपर बेटा दे रहा हूँ।
0: सामान भी बता दीजिए।
1: मोटरसाइकिल तो आप जरूर देंगे।
0: मोटरसाइकिल?
1: और क्या, खुद मोटरसाइकिल पर चढ़ेंगे और आपका दामाद पैदल चलेगा?
0: जी नहीं, मैं पैदल चलूंगा, मुझे डॉक्टरों ने पैदल चलने को कहा है।
1: मेरा राजन शहर जाने में तकलीफ होती थी, स्टेशन जाओ टिकट खरीदो तब गाड़ी पर बैठो।
0: जी हाँ मैं समझता हूँ, और कोई सेवा हो तो?
1: और का, अरे वही मेज कुर्सी बर्तन सर्तन,
0: फर्नीचर स्टेनलेस सेट बर्तन क्रॉकरी सब दूंगा। और बोलिए।
1: और मगन रहू चोला, अरे वो रेडियो जिसमें फोटो आती है उसको क्या कहते हैं?
0: टेलीविजन।
1: हाँ हाँ वही वही वही दीजिएगा।
0: वो भी दूंगा, अब तो ओखली में सिर दे ही दिया है भैया।
1: दिल चौड़ा रखिए भाई साहब, हमें तो ऐसा ही समझी चाहिए, जो मुंह से निकाला सो हाजिर है।
0: तो मैं अगले इतवार को परीक्षा देने आ जाऊं?
1: आ जाइए आ जाइएगा, शुभ काम में देर काहे की। हाँ
5: अम्मा पेट में बड़ा दर्द है।
2: कैसा दर्द है बेटवा?
5: लगता है पेट में घसियारिन घास छील रही है।
1: अब का होगा, सब गुड़ गोबर हो गया।
5: मुंशी जी अभी तक नहीं आए?
2: बुलवाया है, आते ही होंगे।
1: कल ही परीक्षा है। और
4: क्या हो गया, क्या हो गया राजन, कहाँ दर्द है भगवान के फजल से?
5: मुंशी जी अब मैं नहीं बचूं।
4: अरे भाई नहीं नहीं नहीं
2: भगवान, ऐसी बात ना बोलो बेटा।
5: अम्मा पानी।
2: बेटा ये लो पानी, हे शंकर भोले, हे गंगा माई, हमारे राजन को ठीक कर दो, हम नरियर चुनरी चढ़ावेंगे।
1: गई भैंस पानी में।
4: अरे दुलारे भाई भैंस को जाने दो, बेटे की फिक्र करो भगवान के फजल से। हाँ
5: मुंशी जी गांव के डॉक्टर की दवा नहीं लगती। हाँ। मर्ज उनकी पकड़ में नहीं आया।
4: अरे भाई देखो ना, मर्ज भी तो नए नए चल गए हैं भगवान के फजल।

0: रहे हैं।
1: हाँ, सब बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता मुंशी जी।
2: जी छोटा मत करो बेटा, हम तुम्हें शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा देंगे, हम तुम्हारे बराबर रुपया।
3: भगवान, हम चले गए तो परीक्षा का सरंजाम कैसे होगा?
1: मुंशी जी, इन्हें परीक्षा की तैयारी करने दीजिए, आप मुझे डॉक्टर को दिखा लाइए।
3: मुंशी जी, हाँ मुंशी जी, आप हमारी मदद कर दीजिए।
4: भाई देखो, मदद से इनकार नहीं, लेकिन भाई मेरे खेत पर भी बहुत काम पड़ा हुआ है भगवान के फजल से।
2: सब काम छोड़ दीजिए, अपने राजन की फिक्र कीजिए।
4: अजी भाई देखो बहू, तुम कहती हो भाई तो जाना ही पड़ेगा। हाँ
3: मुंशी जी, कल तक लौट आइएगा,
4: ठीक है? ठीक है,
3: बाल परीक्षा देने आवेंगे।
4: हाँ, देखो भाई दुलारे भाई, मर्ज पर मेरा कोई काबू नहीं है। हाँ, डॉक्टर कहेगा तो राजन कल ही आ जाएगा भगवान के फजल से।
5: समधी जी, राजन बाबू कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ते?
3: शहर गए हैं भाई साहब, सामान खरीदने आते ही होंगे।
5: हमें जल्दी परीक्षा देकर लौटना है।
3: शुभ काम में देर काहे की, बस राजन को आ जाने दीजिए।
4: भाई सोचा था क्या हो गया।
3: अच्छा, मुंशी जी आ गए हैं।
4: यहाँ तो होने वाले समधी जी भी तशरीफ रख रहे हैं भगवान के फजल से।
3: मुंशी जी, मैं परीक्षा के लिए हाजिर हूँ।
4: भाई बड़े मौके से आए हैं आप।
3: राजन कहाँ है?
4: अजी भाई राजन भी आ जाएगा, जरा तुम अंदर तो आना मेरे साथ। हाँ भाई अंदर तो आना।
3: मुंशी जी, आप ही क्या कह रहे हैं?
2: हमारा राजन बिटिया हो जाएगा।
4: यकीनन हो जाएगा, डॉक्टर ने यही बताया है भगवान के फजल से।
3: इसीलिए उसके पेट में दर्द था।
4: हाँ भाई, इसीलिए उसका मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा था।
2: हे भगवान, मुंशी चाचा अब क्या होगा?
4: अजी भाई देखो, अब एक छोटा सा ऑपरेशन होगा भगवान के फजल से।
3: ऑपरेशन?
4: हाँ, और ऑपरेशन के बाद जो दर्द है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो राजन है ना बस रजनी हो जाएगा भगवान के फजल से। हाँ
2: हे शंकर भोले, तुम ही बताओ मैं क्या करूं।
4: अजी भाई मैं बताता हूँ, तुम राजन के लिए एक साड़ी और ब्लाउज निकाल दो फौरन, उसे अस्पताल में जरूरत पड़ेगी भगवान के फजल से।
3: एक साड़ी ब्लाउज से क्या होगा मुंशी जी?
4: हाँ,
3: गठरी भर दहेज कहाँ से आएगा?
4: भाई दुलारे भाई, डॉक्टर दहेज का नहीं, वो सिर्फ मरीज का इलाज कर सकता है। हाँ,
2: हम ऑपरेशन न कराएं तब क्या होगा?
4: तब अजी भाई, तब राजन की जान को खतरा है भगवान के फजल से। हाँ।
3: इस पार कुआं उस पार खाई, बोलो भगवान किस में कूदोगी?
2: राजन के बाबू तुम खामोश रहो।
3: अरे तो हमने क्या कर दिया भाई, ये कलयुग है कलयुग, भगवान की टकसाल में जाली सिक्के ढलने लगे।
4: अजी भाई देखो देखो, तुम लोग आपस में चोंच मत लड़ाओ। हाँ, रामपाल जी जो है ना वो बैठक में बैठे हुए हैं, पहले परीक्षा का मसला तय करो भगवान के फजल से।
2: हाय अब क्या तय करें, सोना तो लोहा हो गया।
4: अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कहो बहू, रामपाल का लड़का भी तो शादी के काबिल है।
3: है तो है।
4: हाँ, वो शादी करना चाहते हैं तो करे।
2: कैसे?
4: अरे भाई तुम लड़के के बजाय लड़की ब्याह देना, जवान लड़की भाई कब तक घर में बैठाए रहोगे भगवान के फजल से, बोलो।
3: हम नगद नारायण कहाँ से लाएंगे?
4: अरे भाई देखो ना, बात करने में क्या हर्ज है, रामपाल आखिर रिश्ते के लिए ही तो आए हैं भगवान के फजल से।
5: मुंशी जी आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं।
4: अमा भाई इसमें हर्ज क्या है, बोलो बोलो बोलो।
5: कुछ नहीं है, लेकिन दहेज भरपूर मिलना चाहिए।
4: गरीब भाई, गरीब आदमी है ये। देखो भाई दुलारे भाई पर दया कीजिए और अपनी फरमाइश बताइए।
5: ज्यादा कुछ नहीं मुंशी जी, बस यही कोई 20,000 का फलदान होगा।
3: 20,000?
5: जी हाँ, और 10 थान सोने का जेवर, 4 थान चांदी के जेवर और 5 बनारसी साड़ियाँ।
3: रामपाल जी, हम दीन है, आप दीन बंधु है, हमसे जो पान फूल बन पड़ेगा।
5: कैसी बात करते हैं भाई साहब, पान फूल से सिर्फ देवता प्रसन्न होते
4: हैं। जी भाई देखिए, बात ये है कि दुलारे भाई गरीब हैं, हाँ, लेकिन इनका खानदान बहुत
5: है। ठीक है, गरीब है तो मैं इनसे टेलीविजन नहीं लूंगा, लेकिन मोटरसाइकिल तो देनी ही पड़ेगी।
3: मोटरसाइकिल वो तो आपको भगवान ने दिया है, मैं सिर्फ साइकिल दे सकता हूँ।
5: साइकिल अपने अपने पास रखिए, मैं आपके घर शादी नहीं करूंगा।
4: अजी भाई रामपाल जी, दुलारे भाई का अरमान रखिए। हाँ, बेचारे वैसे भी कुदरत के कारखाने से ठगे हुए हैं भगवान के फजल से। हाँ
5: मुंशी जी, दहेज की मांग पहले दुलारे भाई ने की थी, इसमें मेरी क्या गलती?
4: बात तो भाई ठीक है, भाई दुलारे भाई तुम दहेज ले रहे थे तो देने में क्या हर्ज भगवान के फजल से?
3: मुंशी जी बोलो। हाँ, मेरी तो मत मारी गई थी, मुझसे भूल हुई। भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ मुंशी जी, ब्याह का कोई सौदा नहीं है, दहेज लेना पाप है।
4: बोलिए भाई रामपाल जी, अब आप क्या कहते हैं भगवान के फजल से?
5: ठीक है मुंशी जी, मैं भी दहेज नहीं लूंगा।
3: तो आप मेरी बेटी से अपना बेटा ब्याहेंगे?
5: जी नहीं, मैं आपके बेटे से अपनी बेटी ब्याहूंगा।
3: बेटा?
4: हाँ भाई जी, हाँ दुलारे भाई, आपके बेटे ने फिलहाल बेटी बनने का इरादा छोड़ दिया है।
3: मुंशी जी आप सच कहते हैं?
4: अरे और क्या, मैं झूठ कहता हूँ भाई, यकीन ना हो तो देख आइए, राजन मेरे घर में बैठा है मुंशी के पास।
3: अरे भगवान सुनती हो, अपना राजन रजनी नहीं बनेगा।
4: भाई सुनो तो।

0: सुनो तो, चल कहाँ दिए दुलारे भाई?
1: राजन की अम्मा को मना कर दो मुंशी जी, वो बक्से से साड़ी ब्लाउज निकाल
0: रहे। भाई साड़ी की फिक्र छोड़ो, पहले परीक्षा तो लेते जाओ भगवान के फजल से।
1: परीक्षा में बाद में लूंगा, पहले एक भिक्षा दीजिए।
0: अरे भाई मांग लो मांग लो, क्या मांगते हो भगवान के फजल से बोलो।
1: ये बताइए, राजन को दर्द नहीं था तो इतना बड़ा झूठ ये सब?
2: राजन बाबू को दर्द था।
1: कैसा दर्द था
0: भैया? भाई दर्द ये था कि वो रामपाल की बेटी के बगैर जी नहीं सकता था।
2: दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं।
1: दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम रोकने वाले कौन है भैया? मियाँ बीबी राजी तो का करें?
0: ये बात तुम अब कह रहे हो दुलारे भाई, पहले तो दहेज न मिलने पर काशीवास करने पर आमादा थे भगवान के फजल से।
2: मुंशी जी ने आपको सही राह पर लाने के लिए मुझसे मिलकर नाटक किया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है समधी जी। अरे घास गिरी तो गिरी, पर गिरी बहुत मिट्टी है।
0: दुलारे भाई तुमने दहेज का दूसरा पहलू देख लिया भाई, ये ठीक ही रहा। अब कभी मत भूलना कि दहेज के दलदल में फंसने वालों का जमाना अब नहीं रहा भगवान के फजल से। यहाँ नहीं
3: मुंशी इतवारी लाल। अभी आपने नरेश मिश्रा की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे विनोद रस्तोगी। आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में यारियां टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे यो यो हनी सिंह। अब आइए सुनते हैं फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत। हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

मलयाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे ऋत्विक तलाशिक शिलकर और साथियों की आवाज़ों में। प्रशांत इंगोली ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से संवारा था। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम में। अब वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज़ों में सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, अन्नू मलिक ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

दिल्ली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था, ए आर रहमान की तर्ज थी। इसी गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत

0: सड़कों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
0: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ

0: किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
4: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक, कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का

0: अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है आपके लिए। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

काला बाजार फिल्म का गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे एसडी बर्मन। आपके लिए कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, जिसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। लीजिए अब सुनिए ये गाना। सन ऑफ इंडिया फिल्म का ये गीत

लता मंगेशकर और सखियों के सुरों में शकील बदायनी का लिखा हुआ ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को संगीत से संवारा था नौशाद ने और फिल्म का नाम था सन ऑफ इंडिया। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में बड़ा आदमी फिल्म का ये गाना। रचना प्रेम धवन की है, संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: अम्बेसडर तैयारी।
1: इंडोनेशिया इज वेरी रिच इन क्रिटिकल मिनरल्स. दे हैव ऑलमोस्ट 21% सप्लाई ऑफ निकल ग्लोबली, एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड हैज सीन दैट देयर इज ए डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर बोथ क्रिटिकल मिनरल्स एज वेल एज फॉर इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स. एंड देयर इज ए एग्रीमेंट नाउ बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया टू जॉइंटली वर्क टूगेदर टू एड्रेस दिस इशू सो दैट शॉर्टेज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इज रिड्यूस्ड. एंड इन दिस एफर्ट आई वुड सी परहैप्स ऑल्सो वील सी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ऑल्सो सो दैट इट विल बी ए कलेक्टिव एफर्ट ऑफ इंडो पैसिफिक कंट्रीज टू मीट और टू ब्रेक द मोनोपोली ओवर क्रिटिकल मिनरल्स विच
0: यस
1: चाइना हैज.
0: यस इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI इज गेनिंग ए लॉट ऑफ थ्रस्ट एंड अप्रिसिएशन ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। टुडे इट वॉज अनाउंस दैट UPI विल सून बी इंटीग्रेटेड विद इंडोनेशियाज पेमेंट सिस्टम। हाउ हैज दिस बूस्टेड इंडियाज इमेज एज ए चेंज मेकर एंड लीडर इन द डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन UPI इज क्रॉसिंग बॉर्डर्स?
1: India is being admired and appreciated globally for its great achievements in digital technology and taking it to the masses, to the last person in the queue, whether it is Aadhaar card and now the UPI. Everyone in India has that QR code, and Indonesia, they have their own payment system that will now be integrated with UPI. So that Indian tourists can pay in rupees when they go to Indonesia through UPI, and Indonesian visitors, tourists, business, they can come to India and
0: And they
1: pay
0: can
1: through
0: also pay.
1: UPI.
0: Yes. Agreements to
1: Yes.
0: strengthen technology cooperation in areas such as artificial intelligence, telecommunication, and to further deepen collaboration between the startup ecosystems of both the countries. How can India and Indonesia partner in the field of AI?
1: Both India and Indonesia are young countries. We have very large population of youth. India is 150 crore, Indonesia is 28 crore population. And for future development of both countries, it is important to master these new technologies which are on the horizon related to artificial intelligence and data centers and all that new areas. And it is very important that India and Indonesia will work together in these areas where India has certain skills, certain advantages, certain experience, and a very large research and development establishment. And this cooperation will be very beneficial to both the countries. As our Prime Minister said, that 21st century is a technology-driven century. So
0: Yes.
1: both countries will be well prepared to meet the challenges of this technology-driven century.
0: Prime Minister Narendra Modi has been conferred with highest award of Indonesia, and the Prime Minister also addressed the Indonesian Parliament today. So before we move forward, let's first listen to the Prime Minister's part while he was speaking at the Parliament.
2: पिछले दो दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं. भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है. आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ भी पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं. जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है.
0: लेट्स लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर्स पार्ट व्हाइल रिसीव हाईएस्ट अवार्ड.
2: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है. ये सम्मान कोटि कोटि भारत

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा किया जाए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश

का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

सन 1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

सन 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनकी करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: था। आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रूठना एक शब्द नहीं है, रूठना एक सजा है। जब जिंदगी रूठ जाती है तो सजा बन जाती है जिंदगी। रूठी हुई जिंदगी को मनाना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी हरी भरी होती है, फूलों सरीखी मुस्कुराती है जिंदगी, लेकिन एक आंधी आती है और सारे फूल मुरझा जाते हैं। जिंदगी रूठ जाती है। प्यार दो लोग करते हैं, बेवफा दोनों नहीं होते हैं। फिर क्या होता है जो जिंदगी रूठ जाती है।

टूटी हुई जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी जब जिंदगी खुश होती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है मोहब्बत उनकी जिंदगी फूलों की झालर जैसी हो जाती है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब मिल जाता है किसी का भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वे कांटों की परवाह नहीं करते, खुशनसीब होते हैं वे जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।

0: कभी कभी।
1: कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं होती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चकमक रहते हैं। वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हरे रहते हैं। कौन से लम्हे हैं वो जिन्हें हम अपनी पलकों की कोरों में सहेज लेते हैं।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए
3: कहिए
0: सुनिए एक खुशखबरी
3: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: ใจรอด
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भव तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले

0: हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद ही विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।